नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का

विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस

0: महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चला मुलीच्या आई वडिलांनी कन्यादानासाठी खाली पाटावर बसा।
2: अगं शिल्पा, येईल का खाली बसता?
3: गुरुजी, जरा स्टूलवर बसू का? माझे गुडघे भयंकर दुखतात, खाली बसूच शकत नाही।
2: बऱ्याच डॉक्टरांनी तर हिला ऑपरेशनचा सल्ला दिलाय।
1: अहो, तुम्ही एक काम करा, सरळ पिंपरी चिंचवडच्या डॉक्टर परीक्षित फेगडेंकडे जा। तुम्हाला सांगतो, माझे गुडघे डॉक्टर परीक्षित फेगडेंनीच पूर्ण बरे केलेत। मी 5 वर्षे मांडी घालून पूजा सांगितली नव्हती। आता बघा, मी पाटावर बसून पूजा सांगतोय, तुम्ही डॉक्टर परीक्षित फेगडेंचे उपचार घ्या। अहो, तिथे गुडघ्याची झीज, मणक्यातील गॅप आणि जुनाट संधिवात यावर 100% खात्रीशीर आणि चांगले उपचार आहेत। डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे उपचार, तेही विना ऑपरेशन।
2: अहो गुरुजी, आता शिल्पाला तिथेच नेतो हा, पण डॉक्टर फेगडेंचा नंबर असला तर द्या ना गुरुजी।
1: हा घ्या नंबर, सोपा आहे, 95-95-24-25-59।
4: डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक, संपर्क 95-95-24-25-59।
1: इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो।

0: श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चला मुलीच्या आई वडिलांनी कन्यादानासाठी खाली पाटावर बसा।
1: अगं शिल्पा, येईल का खाली बसता?
2: गुरुजी जरा स्टूलवर बसू का? माझे गुडघे भयंकर दुखतात, खाली बसूच शकत नाही।
1: बऱ्याच डॉक्टरांनी तर हिला ऑपरेशनचा सल्ला दिलाय।
0: अहो तुम्ही एक काम करा, सरळ पिंपरी चिंचवडच्या डॉक्टर परीक्षित फेगडेंकडे जा। तुम्हाला सांगतो, माझे गुडघे डॉक्टर परीक्षित फेगडेंनीच पूर्ण बरे केलेत। मी 5 वर्षे मांडी घालून पूजा सांगितली नव्हती, आता बघा मी पाटावर बसून पूजा सांगतोय। तुम्हीही डॉक्टर परीक्षित फेगडेंचे उपचार घ्या। अहो तिथे गुडघ्याची झीज, मणक्यातील गॅप आणि जुनाट संधिवात यावर 100% खात्रीशीर आणि चांगले उपचार आहेत। डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे उपचार, तेही विना ऑपरेशन।
1: अहो गुरुजी, आता शिल्पाला तिथेच नेतो हा, पण डॉक्टर फेगडेंचा नंबर असला तर द्या ना गुरुजी।
0: हा घ्या नंबर, सोपा आहे, 95-95-24-25-59।
3: डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक, संपर्क 95-95-24-25-59।
0: इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
5: पुढचं पद ऐकण्याआधी आपण पोज देऊया। सुनीता निमकर, निशा लोहार, अनिल नाईक, अनुया देवळे, मीना शेवडे, संजय पुंडे यांचा फोनद्वारे संपर्क झाला। विजय जोशी, सुनीता उत्तुरकर, राजेश शहा, श्रीप्रकाश वाघ, सुहास कुलकर्णी, सरला शिंपी, सचिन शिंपी आणि किरण शिंपी, रवींद्र पाटील, प्रताप जाधव, आभा पाटील, प्राजक्ता देव, दत्तात्रय आडत, संपदा भाटवडेकर, मनीषा राणे, अविनाश भोजापुरे, नरेंद्र सामंत, मिलिंद राणे, सुरेखा पाटील, सुप्रिया रायकर, विलास बुरुंगले, निशिकांत जोशी, कविता जोशी, संतोष भंडारी, अनुपमा आणि उमाकांत गोलतकर, सुरेश बावकर, अशोक शिंत्रे,

पण झालं काय माहितीये, गेला रडत रडत स्वतःच ढसा ढसा

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अपन चंदनच्या बाबतीत बोलत होतो, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील माणसांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न, त्यांची सुखदुःख आणि संवेदनशीलता त्यांनी आपल्या कथांमध्ये अत्यंत जिवंतपणे टिपली। तब्बल 27 कथासंग्रह प्रकाशित झाले। शहाणी सकाळ आणि कवडसे याच्यासारखी पुस्तकं वाचकप्रिय झाली। वृत्तपत्रांमधून गाजलेलं सदर स्तंभलेखन शन्नाडे तेही घराघरामधून आवडीनं वाचलं जायचं आणि कथा कादंबऱ्यांच्याप्रमाणे मगाशी आपण म्हटलं तसं मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टी याच्यामध्ये आपल्या अष्टपैलू लेखनाने त्यांनी समृद्ध केले। 31 नाटकं लिहिली, ज्यामध्ये ज्येष्ठ साहित्यिक जयवंत दळवी यांच्या महानंदा कादंबरीवर बेतलेलं गुंतता हृदय हे नाटक मराठी रंगभूमीवर एक मैलाचा दगड ठरला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया

0: जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: जिस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया, अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
6: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
7: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 21

0: साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
2: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंटरैक्ट विद पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेवा यात्रा फॉर सेकेंड डे टूडे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू मैन्युफैक्चरिंग नेशन कंप्लीट्स 12 इयर्स टूडे। FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today with video conferencing with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. More from our correspondent.
6: The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experience from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
5: The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step toward grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people, and the new learnings they had gathered during their journey. Today marks 12 years of Make in India. It was on this day in 2014 when the initiative was launched with the ambition of becoming a global hub for manufacturing, design and innovation. The initiative has transformed India's manufacturing landscape by expanding production, investment and capabilities across industries. We have a report.
7: Over the years, Make in India has opened new opportunities for businesses and investors to participate in India's manufacturing journey. The initiative has subsequently been expanded under Make in India 2.0. The initiative now focuses on 27 sectors, which include 15 in manufacturing and 12 in services. Guided by minimum government, maximum governance, it has also sought to modernize processes and policies. Under the initiative, India's electronics production increased nearly sevenfold from 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to over 13 lakh crore in 2025-26. During this period, Indian Railways manufactured nearly 55,000 coaches over 2014-2024. Further, under the Make in India initiative, country's indigenous defense production increased from 46,429 crore rupees in 2014-15 to a record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. The initiative now goes beyond producing more goods and focuses on building the skills, technology and capacity needed to make them in India. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
5: The Food Safety and Standards Authority of India, or FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in the nomenclature, labeling or marketing. The FSSAI has proposed the amendment in the Food Safety and Standards Prohibition and Restrictions on Sales Regulation 2011 for analog paneer. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through Shri Ann or Millets.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: एक सौ सात दशमलव एक मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रवि शंकर। सुबह के 8:40 हो रहे हैं और ये समय होता है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम मस्त मुंबई का। तो चलिए मस्त मुंबई की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह की प्यारी सी आवाज़ के साथ। चूँकि आज पूरा देश गणपति उत्सव मना रहा है, आज मुंबई में खास तौर पर गणपति उत्सव का विसर्जन का दिन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं गणपति जी के इस गीत से, गजानना। बने रहिए FM रेनबो के साथ, मैं RJ रविशंकर।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई का, ये एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। सुबह के 9:06 हो रहे हैं, कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है। अभी हमने आपको गणपति जी से जुड़े हुए गाने सुनाए, गणपति जी पर आधारित गाने सुनाए। दोस्तों, धार्मिक त्यौहार जो होते हैं, उत्सव होते हैं, ये सिर्फ धार्मिक त्यौहार या हमारी आस्था से ही जुड़े नहीं होते हैं। अगर हम बात गणपति महोत्सव की करें, आज विसर्जन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो तिलक साहब के द्वारा, तिलक जी के द्वारा ये शुरू किया गया था कि कहीं ना कहीं जो हम आज़ादी से वंचित थे, उसमें लोगों को एकजुट करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे कि हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो धार्मिक आस्था को केंद्र बनाकर तिलक जी ने सबको जोड़ा और गणपति उत्सव मना। चूँकि गणपति उत्सव में लोग एक जगह एक साथ आसानी से एकत्रित हो सकते थे और उसी एकत्रित मीटिंग में, उसी सभा में हम कई तरह के लोग उस समय बातें कर सकते थे अपने संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा धार्मिक त्यौहार है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा है। और इसीलिए आज मुंबई में कई वर्षों से लगातार तभी से ही धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाता है और पूरा मुंबई कर मुंबईवासी जब गणपति उत्सव आता है तो इसी तरह इस रंग में डूब जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो है गणपति उत्सव हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि की ओर भी लेकर के जाता है, क्योंकि विचार ही तो हर चीज़ की देन होती है। विचारों से ही हम आगे बढ़ते हैं, विचार ही हमें कहीं ना कहीं आगे पहुंचाते हैं, और विचार जब पवित्र होते हैं तो हमारा कार्य भी पवित्र हो जाता है और पवित्र काम का अंजाम भी पवित्र ही होता है। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। अगली पेशकश फिल्म वांटेड से जलवा, चूँकि गणपति बप्पा का जलवा है आज, तो सुनिए गाना।

107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है और अभी मस्त मुंबई में हमने आपको गाना सुनाया फिल्म वांटेड से। साजिद वाजिद की धुन थी और काफ़ी एनर्जेटिक और बेहतरीन गाना था जलवा। आज पूरा मुंबई पिछले कुछ दिनों से हम गणपति उत्सव में हम लोग शामिल हैं और गणपति उत्सव हम मना रहे हैं, तो जलवा भी गणपति जी का है। और गणपति की जलवा की बात करें तो सुख और समृद्धि कैसे सुख और समृद्धि की बारिश होती है। कहते हैं गणपति बुद्धि के दाता हैं और कहीं ना कहीं मन और बुद्धि का ही तो कमाल है कि हम अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं और बुद्धि के द्वारा ही हम उस चीज़ को पा लेते हैं। और सद्बुद्धि के लिए बुद्धि और सद्बुद्धि में थोड़ा सा अंतर भी होता है। सद्बुद्धि के लिए हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि हो और उस बुद्धि से हम सुख और समृद्धि को प्राप्त करें। 9:13 हो रहे हैं, साथ ही कुछ श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन कुमार जी मनपुर बाजार से जुड़े हैं, हितेंद्र दास, राकेश माथुर, प्रमोद कारखनीश जी पुणे से जुड़े हुए हैं। चेतन कुमार जी लिख रहे हैं कि गणेश उत्सव की शुभकामनाएं और कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है, गीत भी बढ़िया है। यशवंत आड़मुटे जी मस्त मुंबई सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम बेहद प्यारा है। धाराशिव वाशी से लिख रहे हैं हितेंद्र दास जी, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। बने रहिए इसी तरह से एक बेहतरीन गाने हम आपको सुनाते रहेंगे। आकाशवाणी एफएम रेनबो का ये मस्त मुंबई कार्यक्रम चल रहा है, आप सुन रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी कुछ गाने फरमाइश करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसे शामिल करने की अपने इस कार्यक्रम में। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का यह एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। 9:26 हो रहे हैं, कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है और मस्त मुंबई में भी आपने गाना सुना फिल्म लंदन ड्रीम से परसों यारो, और साथ में हनुमान जी की भी, हनुमान चालीसा का भी कुछ अंश इस गाने में जरूर आया है। और इस गाने को वो बेहद खूबसूरत, ये खास तौर पर वो जो चंक है लास्ट का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एकदम सुनने के बाद तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमको उस भक्ति भाव से जोड़ देते हैं जो हम अपने दिल के अंदर महसूस करते हैं। लंदन ड्रीम्स एक म्यूजिकल फिल्म रही थी, सलमान खान ने इसमें एक कह सकते हैं कि एक देशी कलाकार का रोल प्ले किया था, जो कि एक बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के एक बैंड में जो अजय देवगन उनके दोस्त होते हैं, वो अपने आप को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, लेकिन अजय देवगन अपने देशी अंदाज से, देशी गायकी से उस बैंड के चहेते बन जाते हैं, सबके प्यारे बन जाते हैं। फिर एक कश्मकश जो होता है, कहीं ना कहीं वो दोस्ती के बीच भी आ ही जाता है, लेकिन शुक्र है कि जब फिल्म का अंतिम हिस्सा आता है, क्लाइमेक्स आता है, तो ये चीज़ें जाके शॉर्ट आउट वहाँ हो जाती है और फिल्म जो है एक तरह का हमें हैप्पी एंडिंग पर ला के छोड़ देता है। और रही भारतीय फिल्मों की, तो बात भी यही होती है कि हम अक्सर चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक के ज़रिए हो या कहानी के ज़रिए हो, बात तो हम खुशहाली की ही करना चाहते हैं। और गणपति उत्सव का आज विसर्जन का दिन है, तो हम सभी चाहते हैं कि जब गणपति विसर्जन के इस अंतिम दौर में हम हैं, तो चाहते हैं कि जब गणपति बप्पा अगले वर्ष हमारे इस कार्यक्रम में गणपति उत्सव के तहत आएँ, तो उससे पहले हम अपने जीवन को थोड़ा सा और बेहतर बना लें, एक पॉजिटिव दिशा की ओर लेकर जाएं। और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें आस्था से जुड़ा एक आशीर्वाद भी हो, ब्लेसिंग भी हो। ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत होती है हमारे जीवन में, क्योंकि विचारों के द्वारा जो हमारे कार्य संपन्न होते हैं, कहीं ना कहीं एक कसक तो रह जाती है कि काश ये तो मैं नहीं कर पाया, ये हो जाता, और हम अपने सभी कार्य को ऊपर ईश्वर पर छोड़ देते हैं। और फिर जो एक एनर्जी आती है हमारे अंदर, एक सकारात्मकता का एहसास होता है, वो कहीं ना कहीं हमें उस काम को और पक्के तौर पर हो जाने की, एक तरह से कहिए तो आश्वासन हमें मिल जाता है एक तीसरी शक्ति से, थर्ड पावर से। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, अगली पेशकश आप तक पहुंच रही है।

0: IG 名古屋。
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी वांडवाल। एशियन गेम्स के मैदान से भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन, पदकों की खबरें, हर बड़े मुकाबले का ताजा अपडेट हम पहुंचा रहे हैं सीधे आप तक। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी अपडेट के साथ। एशियन गेम्स में भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एशियन गेम्स 2026 में भारत का स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। उनका अंतिम स्कोर 484.6 रहा, जो दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक रहा था। ईरान ने यहां पर कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। एंड द अदर गुड न्यूज दैट कम्स दिस मॉर्निंग इज वंस अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग। दोस्तों, इंडियन मेन इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस हैव आल्सो सिक्योर्ड द सिल्वर फॉर इंडिया। जी हाँ, दे डिलीवर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर फिनिशिंग थर्ड विद 589, नीरज कुमार स्टूड फोर्थ विद 588 और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल फिनिश नाइन्थ विद 585। भारत का टोटल स्कोर इसके साथ बन गया था 1762 यानी 1762, विच अर्नड देम the silver medal. China took away the gold with 1766 points led by Zhang Chenggong's 593, जो अपने आप में एक नया क्वालिफिकेशन गेम्स रिकॉर्ड है। और इसके साथ आपको ये भी बता दे कि अब ऐश्वर्य प्रताप सिंह और नीरज कुमार वापस से आज सुबह हमें 10:30 बजे मैदान में दिखेंगे प्लेइंग द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द

0: इंडियन मैन 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन।
1: साक्षी एक और पदक के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें, टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स इवेंट में मनुषा और दिया चितले ने भारत का कांस्य पदक पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने हांगकांग के वोंग चुंग टिंग और हु डुई केम को हराकर जो सेमीफाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। वहीं एक अन्य मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े को चीन के लिन थिंगडोंग और कुमेन से हार मिली है।
0: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आज हम आ रहे हैं, बिकॉज स्क्वाश में भी भारत को एक मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम अश्योर हो ही चुका है। जोशना चिनप्पा विल बी हैविंग अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट। द 40-year-old पार्टनरिंग विद वी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स डबल स्क्वाश सेमी फाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर देयर फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3 11-5। जोशना एंड वी सेंथिल कुमार विल नाउ बी फेसिंग हांगकांग्स ली काई एंड टैंग मिंगहोंग इन द सेमी फाइनल्स टुमारो, thereby assuring India of at least a bronze medal in the match.
1: साक्षी अब चलते हैं हॉकी के मैदान में। भारत ने जापान को 3-1 से करारी शिकस्त दे दी और एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था उसे जारी रखा है। लाल रिम स्यामी ने पहला गोल किया, जिसके बाद इशिका ने भारत की जो बढ़त थी उसको दोगुना कर दिया। इसके बाद नवनीत कौर ने तीसरा गोल दाग दिया। कोबायाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल दागा, लेकिन भारत ने अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली है।
0: जी शाही, थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां हमारे भारतीय शटलर्स ने हमें फिर से एक बार आज सुबह खुशखबरी ही दी है, बिकॉज इंडियाज इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन एट द एशियन गेम्स गॉट अंडरवे विद ध्रुव कपिला एंड तनिषा क्रास्तो टेकिंग ऑन मालदीव्स अमिनाथ अब्दुल रजाक एंड निबल अहमद इन द मिक्स डबल्स। द इंडियन पेयर मेड अ डोमिनेंट स्टार्ट कंफर्टेबली टेकिंग द ओपनिंग गेम 21-8। इसके बाद जो दूसरा गेम था उसको भी हमारे दोनों ही भारतीय शटलर्स ने अपने नाम कर लिया 21-7 से, thereby winning the match in straight games 2-0 शाहिद।
1: जी हाँ, एक एथलेटिक्स की खबर दे देते हैं। महिला हेप्टाथलॉन में लॉन्ग जंप में अनामिका अनीश छठे स्थान पर है, कोई अच्छी खबर नहीं। पूजा 10वें स्थान पर रही, ओवरऑल स्टैंडिंग में अनामिका 7वें और पूजा 9वें स्थान पर रही थी।
0: जी, और फेंसिंग की दुनिया से आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर लेके आएंगे, बिकॉज इंडिया हैव बीन पुट ऑन द बैक फुट अर्ली इन द मेंस टीम फॉइल राउंड 16 टाई अगेंस्ट हांगकांग एट द एशियन गेम्स। सचिन बिगैन विद अ 2-5 लॉस टू चुन चॉय बिफोर हिमश सिंह वेंट डाउन 3-5 इन द सेकंड रिले, लीविंग इंडिया 5-10 बिहाइंड। वहीं पर आदित्य देन गेव इंडिया सम होप विद अ 6-5 विक्ट्री ओवर कार लॉन्ग च्योंग, रिड्यूसिंग द deficit to 4 points at 11-15. However, 17 saal ke Sachin struggled to find enough touches in the next relay with Hong Kong extending their advantage to 19-12. So ab Bharat ke liye ek uphill aur bahut hi mushkil task hai to fight back into this event, क्योंकि आगे और भी रिलेज दोस्तों आज के दिन में आने वाले हैं।
1: जी चलते चलते तैराकी की बात कर लेते हैं। पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट में धनुष सुरेश क्वालिफाई नहीं कर पाए। पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट में दक्षिण शशि कुमार और अनीश सुनील भी फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
0: यस इंडीड, ये सारे अपडेट्स हम आपके लिए इस समय सुबह 9:30 बजे लेकर आए थे, लेकिन जाने से पहले आपको एक और खुशखबरी दे दे, छोटी सी है लेकिन है तो खुशखबरी कि भारत मेडल टेबल में भी इस समय अब 15 स्टैंड से 12th पोजीशन पर आ चुका है। जी हाँ, 12वें स्थान पर अब भारतीय टीम आपको मेडल टेबल में दिखेगी। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 18 मेडल हो चुके हैं, एक गोल्ड जो और ऐड हो गया है आज सुबह शूटिंग की दुनिया से, उसकी बदौलत अब भारत के पास है 2 गोल्ड 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स, विच पुट्स इंडिया ऑन द टेबल एट द 12th पोजीशन प्रेजेंटली। उम्मीद करते हैं कि ये खुशियों का जो सफर है जारी रहेगा भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। फिलहाल के लिए मोहम्मद शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपसे सुबह के 10:30 बजे एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। गुड बाय फॉर नाउ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
4: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
3: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं।

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आज रविशंकर। 9:56 हो रहे हैं, मात्र एक गाने की गुंजाइश और रह गई है कार्यक्रम मस्त मुंबई में। तो अगली पेशकश हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म जुड़वा 2 से, और अमित मिश्रा की आवाज़ है। और ये कहना चाह रहे हैं कि गणपति जी को हम यही कहेंगे कि पुड़चा वर्षा लो करिया, अगली बार जल्दी आना। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। इस

सुबह के 10 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। मुंबई में आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। गिरगांव चौपाटी, दादर, जुहू समेत प्रमुख विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षित और सुव्यवस्थित विसर्जन के लिए बृहन मुंबई नगर महानगर पालिका ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों, जीवन रक्षकों, एम्बुलेंस और मोटरबोटों की तैनाती की है। समाचार में आगे, मुंबई विसर्जन के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर भर में 24,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है। समाचार में आगे, मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों के अगले 3-4 घंटों में मौसम आज आमतौर पर साफ रहेगा। इसके अलावा मुंबई से सटे पालघर, रायगढ़ और ठाणे जिले में भी मौसम साफ रहेगा।

जी हाँ, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। फिल्म दिल तो है पागल से ये गाना हमने आपको सुनाया, उदित नारायण की आवाज, लता मंगेशकर जी भी साथ दे रही थी, और खास तौर पर इस गाने के बोल तो काफी कमाल के थे। भोली सी सूरत, कहते हैं ना कि सूरत पे तो आदमी मर ही मिट जाता है, सूरत जाल में तो फंसा ही लेते हैं। बहरहाल इश्क का तो कमाल ही ऐसा होता है कि कहीं ना कोई ना कोई चेहरा, कोई किसी ना किसी की बात, किसी ना किसी की अदाएं हमें पसंद आ जाती है और फिर उस पर हम फिदा होते चले जाते हैं। 10:07 हो रहा है, कार्यक्रम नमस्ते भारत चल रहा है। हम अपने साथ में जुड़ने वालों के, श्रोताओं के नाम यहाँ पर ज़रूर लेना चाहेंगे। विजेंद्र घटोल अकोला से लिख रहे हैं, गाने की फरमाइश कर रहे हैं, ज़रूर कोशिश करेंगे विजेंद्र जी आपके गाने को यहाँ पर शामिल करने के लिए। मोहम्मद फरमान लिख रहे हैं कि सर किसी भी गाने को आप शामिल करें, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलारपुर, उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। साथ में फिल्म धर्मात्मा की भी फरमाइश कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता और हैं। तो बने रहिए, हम सभी श्रोताओं को बेहद धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, नमस्ते भारत को सुन रहे हैं। तो चलिए अगली पेशकश, अरिजीत सिंह की आवाज़ आप तक।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये मुंबई केंद्र है, एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। 10:24 हो रहे हैं, नमस्ते भारत चल रहा है और नमस्ते भारत में आपको हम एक से एक बेहतरीन गाने सुना रहे हैं। अभी हमने आपको सुनाया अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में, उदित नारायण भी साथ दे रहे थे, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। अगली पेशकश फिर से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, उदित नारायण साहब की आवाज़ है, फिल्म मन से चाहा है तुमको, चाहेंगे हरदम। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, अगली पेशकश आप तक।

0: देन दे कम्पीटेड इन फाइनल बी, जहां पर उन्होंने तीसरे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम चार पेयर्स के बीच में से, क्लॉकिंग अ टाइम ऑफ 1:40.411 seconds. वही वुमेन्स कैनू डबल में 500 मीटर के सेमीफाइनल्स में मेघा प्रदीप और नेहा देवी ने भी चौथे स्थान पर समाप्त किया फ्रॉम 5 पेयर्स विद अ टाइमिंग ऑफ 2:08.306 seconds. वेल, इसके साथ ही दी इंडियन वुमेन्स कयाक 4/500 मीटर क्वार्टरेट ऑफ देवी क्वारिकप्पा, पूजा सोनिया देवी भैरवम एंड पार्वती गीता फिनिश्ड 8th इन द फाइनल ए विद द टाइमिंग ऑफ 1:45.670 seconds. शाहिद,
1: साक्षी टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। महिला एकल यशस्विनी घोरपड़े ने सीरिया की हैंड जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। यशस्विनी ने मुकाबला 11-5, 11-5, 11-8, 11-8, 11-4 से जीता। अब राउंड ऑफ 16 में उनका सामना जापान के वर्ल्ड नंबर 3 मेवा हरिमोटो से होगा। पुरुष युगल में मानव और मानुष भारतीय जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में जापान के हरिमोटो और शोनोजुका के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व टेबल टेनिस में ही जी साथियान और हरमीत देसाई की जो भारतीय जोड़ी, उन्होंने पुरुष युगल में राउंड ऑफ 2 के मुकाबले में जो दूसरा मुकाबला था उसमें इंडोनेशिया के अफान प्रतमा और मोहम्मद नेगारा को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है।
0: जी, एंड क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी, जहां भारतीय महिलाओं का सामना हो रहा है नेपाल से इस वक्त, और भारत ने पहले हाफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़त बना ली थी ओवर नेपाल 31-17 की एट द एंड ऑफ हाफ टाइम। और अगर हम बात करें उसमें संजू देवी और सोनाली के सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इन हेल्पिंग इंडिया ग्रैब दोस कोवेटेड पॉइंट्स ऑफ 31 points, विच thereby helped them also get a lead in a very convincing manner in the first half over Nepal. Second half की भी शुरुआत हो चुकी है शायद, जहां पर इस वक्त अगर बात करें तो भारत लीड में बना हुआ है 17 अंकों के साथ और नेपाल है पीछे 7 अंकों के साथ। भारत का टोटल अभी तक का 48 पॉइंट्स का, जबकि एक्सैक्टली नेपाल उसके आधे पे है 24 पे। मैच ऑन गोइंग है, बट लुक्स लाइक इंडिया शुड बी विनिंग द सेमीफाइनल इन दिस।
1: आज इंडिया के लिए खबर अच्छी आ रही है। बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एशियन गेम्स की महिला एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में जगह पक्की कर ली है। उन्नति ने उत्तर कोरिया की यूमी सांग को सीधे गेम में 21-9, 21-10 से शिकस्त दी। अब राउंड ऑफ 32 में उन्नति का सामना मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेला जाएगा।
0: राइट, और आपको बता दें टेबल टेनिस की दुनिया में से भी कि टेबल टेनिस के अंदर हम जो अभी देने वाले हैं वो अपडेट आपके लिए यह आ रहा है कि यशस्विनी घोरपड़े डिफीटेड हेंजादा 4-1 टू रीच द राउंड 16 ऑफ एशियन गेम्स। और वहीं पर मिक्स डबल्स के जो हमारा पैर है मानव और मानुष का, दे लॉस्ट टू हरिमोटो एंड शिनोजुका ऑफ जापान 1-3 इन द राउंड ऑफ 32। एंड ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कबड्डी, जहां भारत की महिलाओं ने नेपाल की महिलाओं को दोस्तों हरा दिया है और सेमीफाइनल जीत लिया है, विच मीन्स मोहम्मद शाहिद दैट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल एंड दिस टाइम इट वुड ईदर बी अ सिल्वर और अ गोल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी। And our women will be making us proud once again.
1: बिल्कुल, अब मेडल टेबल पर भारत को उछाल मिलने वाला है। आज जब शाम ढलेगी तब देखेंगे हम भारत का जो मेडल टेबल पर उछाल हो कितनी ऊपर जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतनी, एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट है फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। कार्यक्रम नमस्ते भारत में मात्र एक गाने की और यहाँ पर गुंजाइश रह गई है, तो अगली पेशकश हमने लिया है फिल्म कहो ना प्यार है से। उदित नारायण साहब की आवाज, फिल्म गाने के बोल है कहो ना प्यार है। चूंकि आखिरी हिस्सा है, ये गाने की गुंजाइश रह गई है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अगले कार्यक्रम के लिए आप बने रहें FM रेनबो के साथ। साथ ही साथ हम उन कार्य श्रोताओं के नाम यहाँ पर लेना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े रहे। उनमें आते हैं चेतन कुमार, यशवंत आडमुटे जी हैं, और उन्होंने फरमाइशें भी की थी जिसे हमने प्ले भी किया। विक्रम आठवले जी हैं, उन्होंने फिल्म बाजीराव मस्तानी से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनका हमने प्ले कर दिया और ये उनकी फरमाइश पूरी हो गई। रघुनाथ खानुकर जी हैं, वो भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद बधाई लिख रहे हैं। अजय सखारे इंदौर से लिख रहे हैं। दीपा पालकर, डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी, हितेंद्र दास जी, प्रमोद कारखनीश जी पुणे से जुड़े हुए हैं, आकांक्षा मनोज सिन्हा जी, ये लगातार हमारे कार्यक्रम सुन रहे थे और उन्होंने अपनी फरमाइशें भी भेजी। तो इस मोड़ पर हम यही कहना चाहें

कि गणपति बप्पा के आप ब्लेसिंग के साथ बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। फिल्म कहो ना प्यार है से ये पेशकश आप तक, मुझे दीजिए इजाजत, अगली मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी किसी ना किसी मोड़ पर जरूर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 11:00 मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 138वां एपिसोड होगा। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष पवेलियन स्थापित किया है। इसका उद्देश्य गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान पर्यटकों को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सव की भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोवा में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया को रजत और ईरान को कांस्य पदक मिला। समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

क्या बात है, मेरे ख्यालों की मलिका। अब अभिजीत सर की आवाज सुनकर डेफिनेटली आप सबको, हम सबको अपने जीवन की मलिका याद आई होगी। और जब मैं अभिजीत भट्टाचार्य जी की बात करती हूँ तो वो सारे नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स, ओ माय गॉड, सारे रोमांटिक लव वाले सॉन्ग बोलते हैं ना, वो गाने सुनकर किसी को प्यार अगर ना भी हुआ हो तो बस मन चाहेगा, दिल चाहेगा कि प्यार तो हो ही जाए, ताकि उनकी आवाज में जो गाए गए ये गाने हैं उनको सुनकर हम ये भावनाओं को महसूस कर पाए। तो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि की आवाज ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हमारा कार्यक्रम ब्रेक फ्री शुरू हो चुका है। और ब्रेक फ्री में मतलब, भाई साहब, अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में जब मैंने सोचा कि आज तो इनके सारे गाने प्ले होंगे, तो पता नहीं कैसे, मतलब दूसरों को गाने सुनाने में तो मजा आता ही आता है, पर जब हम खुद भी थोड़ा रिसर्च करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके बोल सुनते हैं, तो चेहरे पर अगर उदासी होना तो उस वक्त के लिए क्या मुस्कान आती है, हाय हाय हाय। और वो सारी यादें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है कि वाओ, क्या जमाना था, क्या टाइम था, क्या गाने थे। और उन गानों से प्यार हो जाता है, उन गानों को गाने वालों के लिए हमारे दिल में उनकी इज्जत और भी बढ़ जाती है। तो आज जो हमारा ये ब्रेक फ्री कार्यक्रम है, ये स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाज़ के लिए, उनको अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देने के लिए और उनके सारे प्यारे गाने सुनने के लिए। तो आप लोग भी बताइएगा आपका कौन सा फेवरेट गाना है अभिजीत भट्टाचार्य जी का, जिससे आपको आपके मलिका याद आती है। और सर तो आई एम द बेस्ट है ही, तो चलिए एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में।

0: लगा
1: रहते हो
0: सच।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्सिंग की खबर के साथ। बॉक्सिंग रिंग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जादे को कड़े मुकाबले में 4-1 से, जो निर्णायक मुकाबला था, उसमें शिकस्त दी। मुकाबले की शुरुआत से ही सचिन ने अपनी रफ्तार और सटीक पंचों से दबाव बनाए रखा। अबू जादे ने अंतिम दौर में जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन रिंग में उनकी थकान साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर सचिन लगातार चुस्त दिखाई दिए और उन्होंने कई सटीक मुक्के लगाए भी, और इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुंसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं।
2: राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शाहिद जी। मूविंग ऑन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द अपडेट आल्सो ओवर हियर, बट अनाहत सिंह इन द वुमेन्स सेमीफाइनल। हम स्क्वाश की पहले बात कर लेते हैं। अनाहत सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रिट तन्वी खन्ना, डिफीटिंग हर 3-0, 11-2, 11-5, 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल्स। द 18-year-old डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कंफर्टेबली गेटिंग पास्ट 30-year-old अपोनेंट। अनाहत विल फेस जापान सतोमी वनटोबे इन द सेमीफाइनल। द जापानीज प्लेयर इज वर्ल्ड नंबर 6 एंड वन ब्रॉन्ज एट द 2022 ह्वांगजू एशियन गेम्स। और आपको यह भी बता दें कि लेटेस्ट अपडेट में भारत के वीर चौधरानी मोहम्मद इरफान से मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से हार गए हैं। वेल, इट वाज ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी टफ टाइम, द स्कोर लाइन रीडिंग 11-6, 8-11, और आगे भी अगर बात करें तो सिर्फ पहला ही वो सेट जीत पाए थे, उसके बाद के वो तीनों हार गए। इट वाज लुकिंग दैट ही वुड बी लूजिंग द गेम, एंड प्रीटी मच दैट सम्स अप द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स इन स्क्वाश। शुरुआती दिन में आज हमने ये भी देखा कैसे स्क्वाश में जोशा चिनप्पा ने भी एशियन गेम्स में एक मेडल भारत के लिए अशोर करवा दिया है। 16 साल के बाद जब उन्होंने अपना यहाँ पे उम्मीद रखेंगे वैशी बी विनिंग द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स्ड डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। द विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। आपको ये भी बता दें कि अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रुयोनसुके त्सुकिकी, बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स टू रीच द मेन सिंगल्स सेमीफाइनल। अभय कुड फेस कंपैट्रियट वीर चौटरानी इन द लास्ट फोर इफ वीर गेट्स पास्ट पाकिस्तान मोहम्मद इरफान, जो कि अब दोस्तों आपको बता दें होने वाला नहीं है, क्योंकि वीर चौटरानी मेन सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल मोहम्मद इरफान से हार चुके हैं। लेकिन उम्मीद यहां पर करेंगे कि अभय आगे अपने नेक्स्ट राउंड में भी प्रवेश करके भारत को भी अभय सिंह मेडल दिलवा सके शायद।
1: साक्षी, शूटिंग से जैसा कि सुबह दो अच्छी खबर आई थी, लेकिन यहां पर एक और फाइनल मुकाबला खेला गया जहां अच्छी खबर नहीं है। शूटिंग 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो फाइनल मुकाबला था, वहां भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में 327.6 अंकों के साथ

0: पांचवा स्थान हासिल किया। वहीं नीरज कुमार 299 के अंक के साथ आठवें स्थान पर है। इस वर्ग में चीन के नाम गोल्ड और सिल्वर यानी दोनों पहले दो पदक रहे, जबकि ब्रॉन्ज मेडल कजाकिस्तान के निशानेबाज ने अपने नाम किया।
1: राइट, एंड गिवन बाय हाउ गुड मोहम्मद इरफान लुक्ड इन द मेंस क्वार्टर फाइनल राउंड, मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स एंड स्क्वाश, वील हैव टू वेट एंड वॉच एस टू हाउ इट टर्न्स आउट इन द सेमीफाइनल्स फॉर अभी सिंह इन स्क्वाश अप अगेंस्ट मोहम्मद इरफान। लेकिन अब मूव करेंगे बैडमिंटन की तरफ भी, जहां उन्नति हुडा बिगान एशियन गेम्स कैंपेन ऑन अ विनिंग नोट, डिफीटिंग नॉर्थ कोरियाज जी मी सॉन्ग 21-9, 21-10 इन स्ट्रेट गेम्स। उन्नति विल नाउ बी फेसिंग मलेशियाज वॉन्ग लिंग चिंग इन द नेक्स्ट राउंड। हमने आज दिन की शुरुआत में एशियन गेम्स में देखा किस तरह से भारत के इंडिविजुअल बैडमिंटन कैंपेन जो शुरुआत हुई एशियन गेम्स में, उसमें ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो ने मालदीव्स के अमीनात अब्दुल रजाक और निबल अहमद को मिक्स डबल्स में किस तरह से उन्होंने प्रवेश करके हरा दिया। दे वेंट ऑन टू डिफीट देयर मालदीव्स अपोनेंट्स इन स्ट्रेट गेम्स, विनिंग द एंटायर मैच 2-0 वेरी कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली, द स्कोर लाइन बीइंग 21-8, 21-7।
0: अब एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में महिला एथलॉन में भाला फेंक इवेंट में अनामिका अनीश ने 10वां जबकि पूजा ने 6ठा स्थान हासिल किया। कुल स्कोर के आधार पर अनामिका 8वें और पूजा 9वें स्थान पर रही। अब दोनों के सामने एक स्पर्धा बाकी है। दोस्तों को बता दें हेप्टथलॉन होता क्या है। हेप्टथलॉन महिलाओं की दो दिवसीय संयुक्त एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें खिलाड़ियों को 7 अलग अलग स्पर्धाओं में प्रदर्शन करना होता है। पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉटपुट और 200 मीटर दौड़ होती, जबकि दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ के साथ प्रतियोगिता पूरी होती है। हर स्पर्धा के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते हैं और सभी 7 स्पर्धाओं में कुल अंकों के आधार पर विजेता तय होता है।
1: राइट, और जाने से पहले आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस समय मेडल टेबल में भारत कैसे स्टैंड कर रहा है। मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 12th। कुल मिलाकर भारत के पास हो गए 19 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड आ चुके हैं, 1 क्रिकेट की बदौलत, महिला क्रिकेट की बदौलत, और 1 हमारी शूटिंग की बदौलत। 8 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। अब यही उम्मीद है कि भारत अपने प्रदर्शन को और बेहतर करता जाए समय के साथ साथ, दिनों के साथ साथ। लेकिन देखते हैं ये सफर भारत के लिए कैसे पैन आउट होने वाला है। फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ दोस्तों एक बार फिर से सारे लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे दोपहर के 12:30 आकाशवाणी के माध्यम से। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

क्या बात है, इतने खूबसूरत गाने। और इन सभी गानों में ना मेरा सबसे फेवरेट गाना जुड़ा है। वैसे तो उनके सारे गाने फेवरेट है, अभी जितने भी गाने चल रहे हैं मजा आ रहा है। मतलब वाह क्या बात है, क्या गाने हैं। इसमें मेरा सबसे फेवरेट अगर मैं ये गाना आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो जो गाना है ना,

इतना सुरीला और इतना मीठा गाना है। तो चलिए फिर किस बात की है देरी, इस प्यारे से गाने को सुनते हैं और आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा कि ये गाना आपको पसंद आता है या नहीं।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

नमस्कार, अब बज रहे हैं 12 और आज के 12 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन गणपति को विदाई देने के लिए शुक्रवार सुबह मुंबई में गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों और ढोल ताशों की थाप के बीच भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन संबंधी शुभ यात्राएं शुरू हुई। लालबाग इलाके में महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन शुभ यात्रा एवं पुष्प वर्षा देखने एवं उत्सव का आनंद लेने के लिए सड़कों के किनारे एकत्रित हुए। बीएमसी ने गणेश विसर्जन के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। विसर्जन के लिए मुंबई में 24,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत में 1762 अंक और 94x हासिल किए। चीन ने 1766 अंक और 95x के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि दक्षिण कोरिया को कांस्य मिला। समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।

अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

घड़ी में बज रहे हैं 12:09 और इससे पहले जो हमारा कार्यक्रम था ब्रेक फ्री, जिसमें हमने सच में फ्रीली एक ब्रेक लेकर अभिजीत दा की आवाज सुनी, उनके गाने एंजॉय किए और बड़ा मजा आया भाई। मुझे भी यहाँ पर रिकॉर्ड रखते रखते बड़ा आनंद आया। और इसी के साथ अब हमारा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे शुरू हो चुका है अगेन, अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्यक्रम, क्योंकि भाई आज है 25 सितंबर और हम सब हैं अपने जीवन के धुरंधर। वाह, यानी कि आज हम अपने सपनों के बारे में बात करेंगे। तो बता दूं, आज है वर्ल्ड ड्रीम डे, यानी कि आज सपनों के बारे में बात करेंगे, कुछ दिलचस्प गाने सुनेंगे। आप चाहे तो अपने कुछ सपने मुझसे साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। दोबारा कहूंगी 8657661071, जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने सपनों के बारे में मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं भी अपने कुछ सपनों के बारे में आपके साथ बातें शेयर करूंगी। तो चलिए पहले एक तो खूबसूरत सा रोमांटिक गाना सुनते हैं, उसके बाद अपने सपनों के बारे में चर्चा करेंगे।

कितना खूबसूरत गाना है चित्रा जी की आवाज में, कहना ही क्या, क्या बात है, क्या कहना है भाई, क्या कहना है। जितनी भी तारीफों के शब्द हम बोले हमारे गायकों के लिए, हमारे कलाकारों के लिए, उतने शब्द कम है। कहते हैं ना, डिक्शनरी कम पड़ जाती है संगीतकार कलाकारों को उपमा देते देते। मतलब भाई, जब हम सपना देखते हैं, कईयों के अलग अलग सपने होते हैं, कुछ सपने बहुत साधारण से, साधारण इसलिए बोल रही हूँ कि सीधे साधे होते हैं, मतलब उनके रास्ते भी आड़े टेढ़े नहीं होते हैं, उनकी सोच भी सीधी सीधी होती है कि भाई आसपास किसी लोगों ने कहा कि ऐसे सपने देखने चाहिए, ऐसे सपने देखने चाहिए, चलो यही सपने हम देखेंगे। किसी किसी के दिमाग में कुछ खुराफती सपने उठते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा नाम रोशन हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो सबने नहीं किया, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं कुछ अलग बनना चाहता हूं। और सपना यानी मेरा मतलब यहां पर सिर्फ करियर से नहीं है, करियर तो एकमात्र एक गोल हो सकता है, बट सपने तो छोटे मोटे बड़े कई सारे हो सकते हैं। किसी का एक अपनी खुद की दुकान खोलने का सपना, खुद का घर खरीदने का सपना। अब ये जो कॉमन सपने हैं उसकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है खुद का घर। जैसे कि आज आप सभी को पता है अनंत चतुर्दशी है, हमारे गणपति बाप्पा फिर से अपने माता पिता गौरी जी और शंकर जी के पास जाने वाले हैं, हमें टाटा बाय बाय कहकर, और पुरचावर्षी लोक लवकर या बोलकर हम उनको फिर से

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां मानुष शाह ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान के बेंजामिन फराजी को सीधे 4 गेमों में 4-0 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। मानुष ने मुकाबले की शुरुआत दमदार अंदाज में की और पहला गेम 11-9 से अपने नाम कर लिया। उसके बाद लय बरकरार रखते हुए दूसरे गेम में 11-6, तीसरे गेम में 11-6 और चौथे गेम में 11-5 से जीत दर्ज की। लगातार 4 गेम जीतकर मानुष शाह ने मुकाबले पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और अगले दौर में जगह बना ली है।
2: जी, थैंक यू सो मच शाहिद। और अगला अपडेट हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कबड्डी की दुनिया से, जहां वुमेन एंड मेन बोथ ऑफ देम हैव गिवन रीजन फॉर द इंडियंस टू नाउ स्टैंड प्राउड, बिकॉज महिला के कबड्डी मुकाबले में हमने देखा भारत ने नेपाल को सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ी आसानी और कन्विंसिंग तरीके से 48-24 से हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं पर अगर मेंस सेमीफाइनल की बात करें तो भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने भी अपना मुकाबला आसानी से जीत लिया थाईलैंड से विद अ स्कोर लाइन दैट रेड 66-28। फर्स्ट हाफ में भारत ने 37-18 से लीड बनाई और दूसरे हाफ में उन्होंने 29-10 से लीड बनाई एंड एज अ रिजल्ट द टोटल स्टूड टू 66-28 इन द मेंस सेमीफाइनल एंड थेरबाय बोथ द इंडियन टीम्स हैव नाउ booked their place in the finals of the ongoing kabaddi in the Asian Games 2026.
1: साक्षी, फेंसिंग की बात कर लेते हैं। भारतीय महिला ईपी टीम को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा है। उज्बेकिस्तान ने कड़े मुकाबले में भारत को शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं सर्फिंग की एक खबर दे देता हूं। सर्फिंग में महिला शॉर्टबोर्ड राउंड 1 में भारत की सुगर शांति गोयन ने कमाली प्रकाश अपने अपने हीट में सबसे निचले स्थान पर, यानी यह दो खबरें हैं लेकिन दोनों में कुछ खास भारत के लिए नहीं है।
2: well, कुछ ऐसा ही समा फिलहाल मैं भी आगे लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज ई स्पोर्ट्स और इक्वेस्ट्रियन की दुनिया से भी मेरे पास कुछ खास वेलकमिंग या फिर स्माइलिंग न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों, ई स्पोर्ट्स में भारत ने अपना मुकाबला साउथ कोरिया से 0-2 से वो पोकेमॉन यूनाइट में हार गए। साउथ कोरिया कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड अबॉलिश्ड द इंडियन टीम इन स्ट्रेट सेट्स, विनिंग द फर्स्ट वन 1-0 एंड द सेकेंड वन ऑल्सो 1-0 अगेन टू मेक इट अ स्ट्रेट विन ऑफ 2-0। इक्वेस्ट्रियन के अंदर इंडिया हु हैड वन गोल्ड इन टीम ड्रेसेज लास्ट एडिशन, मैं आपको याद दिला दे, इस बार भारत ने चौथे स्थान पर समाप्त किया है बिहाइंड चाइना, जापान और कोरिया। भारत के कुल मिलाकर जो अंक बने थे वो थे 201.971 पॉइंट्स, जिसमें श्रुति ने 68.059, हृदय ने 67.353 और जय ने 66.559 के स्कोर्स के साथ कंट्रीब्यूशन दिया। ये तीनों भारत के लिए टॉप 3 स्कोरर्स बने। गौरव, जिन्होंने 65.794 का कंट्रीब्यूशन दिया था, वो क्योंकि चौथे स्थान पर थे इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन इस टोटल के अंदर काउंट नहीं किया गया।
1: फेंसिंग की बात कर लेते हैं साक्षी। फेंसिंग में पुरुषों की टीम फाइल स्पर्धा में राउंड ऑफ 16 में भारत को हांगकांग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जो फाइल जो स्पर्धा है उसमें भारत की चुनौती समाप्त हो गई है।
2: राइट, एंड अ क्विक अपडेट नाउ कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, वेयर वी कैन गिव यू सम गुड न्यूज, बिकॉज सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोशना चिनप्पा हैज अनदर एशियन गेम्स मेडल 16 इयर्स आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट, बिकॉज शी विल नाउ बी कमिंग अप विद द 40-year-old पार्टनरिंग बी सेंथिल कुमार, स्टॉर्मिंग इनटू द मिक्स डबल स्क्वॉश सेमीफाइनल्स विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर द फिलिपिनो ओपोनेंट्स 11-3, 11-5। दिस विक्ट्री अशोर्स इंडिया ऑफ एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। जोशना एंड बी सेंथिल कुमार विल नाउ फेस हांगकांग्स ली का यी एंड टैंग मिंग होंग इन द सेमीफाइनल्स।

0: और हो तो यहां से भारत को एक पदक तो अब जरूर मिलेगा। वहीं अभय सिंह मेड क्विक वर्क ऑफ जापान्स रुनसुके सुखोई बीटिंग हिम 3-0 इन जस्ट 30 मिनट्स टू रीच द मेन्स सिंगल सेमीफाइनल्स। और आपको बता दें कि पहले ये बात हो रही थी कि अभय सिंह का शायद आमना सामना सेमीफाइनल में भारतीय अपोनेंट के साथ ही हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि वीर चतरानी अपना मुकाबला मेन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में मोहम्मद इरफान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे हार गए 1-3। और इसीलिए अब अभय का आमना सामना सेमीफाइनल्स में होगा पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान के साथ। और अनाहत सिंह उनके बारे में भी आपके लिए कुछ खबर लेके आ रहे हैं स्क्वाश की दुनिया से, जहां अनाहत सिंह मेड शॉर्ट वर्क ऑफ कंपैट्रियट तन्वी खन्ना डिफीटिंग अ 3-0 विद द स्कोर लाइन दैट रेड 11-2 11-5 11-3 इन जस्ट 15 मिनट्स टू रीच द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल। द 18-year-old ऑल्सो डोमिनेटेड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश। शी विल नाउ बी फेसिंग जापान सतोमी वतानबे इन द सेमीफाइनल।
1: चलते चलते साक्षी हॉकी की खबर बता दें, जहां भारत ने जापान को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में अपनी जीत का जो सिलसिला था जारी रखा है। महिलाओं की बात हो रही है महिला हॉकी की, जहां लाल रम श्यामी ने पहला गोल किया जिसके बाद इश्का ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। वहीं नवनीत कौर ने तीसरा गोल दागा। कोई बाकावा शिको ने अंतिम क्वार्टर में जापान के लिए एक गोल जरूर दागा, लेकिन ये गोल कोई खास उनके लिए काम नहीं आया। भारत की जो बढ़त थी वो बनी नहीं और भारत ने आसानी से शिकस्त देते हुए यहां पर जीत दर्ज कर ली है।
0: राइट, एंड ऑन दैट नोट दोस्तों अभी के लिए हमारा सफर यहीं पर आकर समाप्त होता है इस अपडेट के अंदर, लेकिन आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे जुड़ेंगे सारे लाइव अपडेट्स लेकर फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। अभी के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत, दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नलीनुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काय काय करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

क्या खूबसूरत गाना था। होते होते होते होते प्यार हो गया, एक चेहरे से प्यार हो गया, भाई हमें भी आकाशवाणी से प्यार हो गया, बिकॉज आकाशवाणी एफएम रेनबो हमेशा ये मेक श्योर करता है कि भाई हम वो गाने सुनाएं जिससे प्यार और बढ़े, हमारी भावनाएं हमारे आंखों के सामने आए और हम खुद को जान सके। और इसी के साथ अब हमारा हिट एंड हॉट प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जहाँ आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। और आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि को ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सबसे पहला जो गाना था ये फरमाइश की गई थी अमित भगत जी के थ्रू, और ये बहुत ही सुंदर गाना था। लेकिन आज एक और बात के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि आज है एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की डेथ एनिवर्सरी। एक ऐसी आवाज़ जिनकी टेक्सचर, जिनकी कलाकारों के लिए, जिनकी आवाज़ के लिए वो इतने प्रसिद्ध हुए। एक महान भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और संगीतकार थे, जिन्होंने हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए। उनका जन्म 4 जून 1947 में आंध्र प्रदेश में हुआ और उनका निधन 25 सितंबर 2020 में हुआ। अब इतने सुंदर गाने गाए हैं कि क्या ही बोलो, उनके गाने जब हम सुनते हैं तो अपने आप हमारा मन किसी और ही एरा में चला जाता है, चाहे फिर वो हो दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, या फिर कबूतर जा जा जा, या फिर तुमसे मिलने की तमन्ना है, या दीदी तेरा देवर दीवाना हो। तो बस आज उसी बात के उपलक्ष्य में हम एक छोटा सा प्यारा सा गाना उन्हीं का गाया हुआ उन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे। मुझे पता है कि जब हम कलाकारों या संगीतकारों की बात करते हैं तो उनसे जुड़े वो सारे गाने हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं, पर जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो भी उनकी आवाज़ से वो अमर रह जाते हैं। तो आइए सुनते एक प्यारा सा गाना

अब इस गाने की फरमाइश की है हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर ने, अजित साखरकर जी ने, और ये बहुत ही सुंदर गाना आपके लिए पेश है। इसी के साथ हम और भी जितना हो सके उतने आपके दिए हुए गाने हम प्ले करेंगे। तो आप सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: वाले हैं टेबल टेनिस की दुनिया में, जहां वुमेन्स डबल्स के हमने आज मुकाबले देखे, लेकिन उसमें कुछ खास अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास आप सबको देने के लिए, क्योंकि वुमेन्स डबल्स का जो पहला मुकाबला हुआ उसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास डिड ट्राई टू पुट अप अ फाइट अगेंस्ट मैन कुआई एंड वांग मान्यू, बट अल्टीमेटली देयर अपोनेंट्स वर जस्ट टू गुड फॉर देम एंड एज अ रिजल्ट श्रीजा अकुला और उनके साथ साथ सिंड्रेला दास लॉस्ट द गेम 3-0. मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग और कॉन्फिडेंट जीत सामने से उनके अपोनेंट्स ने आज श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास के ऊपर हासिल करी. दूसरी तरफ यशस्वनी घोरपड़े एंड दिया चितले लॉस्ट 0-3 टू चाइनाज वाई चेन एंड शुहान फैन. द इंडियन पेयर वेंट डाउन 7-11, 5-11, 8-11 विद द चाइनीज डुओ टेकिंग कंट्रोल अर्ली इन द थर्ड game and opening up an 8-11 lead before India tried to fight back, but it was just too late. Aur din ki shuruaat mein humne dekha tha ki kaise Manush Shah also got the job done against Iran's Benjamin Faraji, sealing a convincing 4-0 victory. That was a good news that came around in table tennis. Aur uske sath sath, lekin uske baad aur koi good news humne mili nahi thi. We had the mixed doubles pair of Manav and Manush, who lost to Harimoto and Shinozuka of Japan. Then Yashaswini Ghorpade defeated Hen Zaza to reach the round of 16 in Asian Games. And the other thing was that Harmeet and Yashaswini were knocked out in the mixed doubles quarterfinals. Big news that came in was that Jia Chitale and Manush Shah have stormed into the mixed doubles semi-finals, jiska mukabla ab kal hoga hopefully. And yaha par umeed kar sakte hain ki Bharat ko shayad एक पदक अपने नाम मिले, लेकिन इट्स गोइंग टू बी स्टिल टू अर्ली शायद टू इवन से दैट.
1: इधर बैडमिंटन की बात कर लेते हैं साक्षी. बैडमिंटन में जबरदस्त रोमांचक मुकाबला चल रहा है. भारत का जो सबसे मजबूत जोड़ी भारत की है वो उतर चुकी है. हालांकि मुकाबला अभी बराबर चल रहा है. एशियन गेम्स का जो पुरुष युगल का मुकाबला, भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना थाईलैंड के पकापोन टिरास्कुल और पिराचाई सुपकुंत के बीच हो रहा है. भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और पहला गेम 21-12 से अपने नाम किया. हालांकि दूसरे गेम में थाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-19 से गेम जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है. अब निर्णायक तीसरा गेम जारी है, जहां दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. हालांकि अभी थाईलैंड की जोड़ी ने 11-9 से बढ़त बना रखी है.
0: राइट, हॉकी की दुनिया से आपको थोड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं का मुकाबला हुआ जापान की महिलाओं के साथ, जहां भारत ने उनको 3-1 से, यानी जापान को 3-1 से हरा दिया इन द एशियन गेम्स. लालरिम सियामी और ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडियाज लीड विद नवनीत कौर एडिंग द थर्ड गोल. कोबाई खावा शीहू पुल्ड वन पैक फॉर जापान इन द फाइनल क्वार्टर, बट इंडिया हेल्ड ऑन कंफर्टेबली टू सील द विन. ये जरूर कह सकते हैं कि इससे पहले के मुकाबले जो हमने भारतीय महिलाओं के देखे हॉकी के अंदर, उसमें काफी ज्यादा गोल्स करके भी भारतीय महिलाएं जीती, और शायद इस मैच में आपने उसकी कमी जरूर महसूस करी हो, लेकिन जीत तो भारत के नाम ही दर्ज हो गई. और अब भारत का एक और पूल मैच है सिंगापुर के खिलाफ, और उसके बाद भारत को आप खेलते हुए देखेंगे सेमीफाइनल्स में इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द विमेंस हॉकी मैच.
1: महिलाओं की बात आपने की, तो यहाँ डबल्स की मैं मिक्स डबल्स की बात करना चाहूंगा. बैडमिंटन की खबर है, भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा करस्टो का मुकाबला मलेशिया के शेवन जेमई लाई और सून हुआट गो के बीच जारी है. भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 22-20 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बनाई, लेकिन दूसरा गेम बेहद कड़ा चल रहा है. दोनों के बीच में जो मुकाबला है, दूसरा गेम जो 21-21 की बराबरी पर अभी मुकाबला जारी है. यहां पर देखना होगा क्या भारतीय जोड़ी इस गेम को जीत कर मुकाबले को अपने नाम कर पाती है. आने वाला कुछ समय ही बता देगा आपको.
0: जी, और एक क्वेश्चन की दुनिया से भी आपको अपडेट दे देते हैं कि जहां हमने पिछली बार देखा था कि भारत की टीम ने गोल्ड हासिल किया था टीम रिसर्च के लास्ट एडिशन में, वहीं अब इस बार भारत ने चौथे स्थान पर फिनिश किया है बिहाइंड चाइना जापान कोरिया. प्रीटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज. भारत का टोटल रहा था 201.97 पॉइंट्स एंड एज अ रिजल्ट इट वॉज जस्ट नॉट इनफ फॉर द इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर्स टू इवन स्टैंड इन कॉम्पिटिशन विद द अदर कंट्रीज. शायद
1: जिस खबर की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है. भारतीय जोड़ी 23-22 से यहाँ पर जो दूसरा गेम है वहाँ आगे है, लेकिन अभी भी मुकाबला जारी है. बात सर्फिंग की कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ हालांकि बहुत अच्छी खबर नहीं, फिर भी जो आपको अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा जो सर्फिंग से खबर है, किशोर कुमार ने हीट जीतकर दूसरे दौर में जरूर जगह बना ली है. भारत

0: किशोर कुमार ने 9.33 के स्कोर के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया और दूसरे दौर में जगह बनाई। उनका जो अगला मुकाबला कल होने वाला, यानी कल उनकी असली परीक्षा होनी है
1: जी। और चलने से पहले आपको एक खुशखबरी की नोट पे ही छोड़ेंगे, बिकॉज आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबरों के साथ हुई थी। शूटिंग की दुनिया से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल्स के बारे में पता चला, बिकॉज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट कमलजीत एंड सुरुचि सिंह ब्रॉट अस द लॉरेल्स बाय गेटिंग इंडिया द कवेटेड गोल्ड। और इंडियन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस में हमारे भारतीय शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। वहीं अगर हम बात करते हैं स्क्वॉश में भी, तो स्क्वॉश में मिक्स डबल्स के इवेंट के जो सेमीफाइनल्स कल घटित होने वाले हैं, उसमें हम ये उम्मीदें रख सकते हैं कि हमें एक मेडल तो डेफिनेटली, अब यानी भारत को मेडल डेफिनेटली अश्योर हो चुका है। इसके साथ ही मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। हम आपसे एक बार दोपहर 3:30 बजे दोबारा जोड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर नाउ इट्स गुड बाय एंड टेक केयर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट और आज के इस कार्यक्रम के आखिरी दो गाने जिसकी फरमाइश की है प्रणव शिंदे जी ने और पंकज मोहर जी ने, तो सुनते हैं ये प्यारे गाने और इसी के साथ मैं आरजे रिद्धि यहाँ से अभी के लिए विदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे किसी अच्छे प्रोग्राम के स्लॉट में। तो सुनते हैं ये प्यारा गाना।

0: during IBSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
3: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
4: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
6: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई।

0: ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
3: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।

0: नमस्कार श्रोते हो, आज आपण गप्पा मारतो आहोत अभिनेते प्रदीप यांच्यासोबत. प्रदीप आणि प्रदीपजी, मला हा प्रश्न विचारायचा आहे की काय असतं माहिती आहे का, अभिनय म्हटलं की घरच्यांना थोडा ठसकाच बसतो की मुलगा अभिनय क्षेत्रामध्ये जाणार, कारण की खूप
1: चला है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट जानने का.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं दोपहर 3:30 के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. सबसे बड़ा अपसेट जो आज हम कह सकते हैं आज के दिन का है, वो रहा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन, जहां पर हमने देखा कि द वर्ल्ड नंबर फाइव पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, हु आर द डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट, हैव क्रैश्ड आउट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द एशियन गेम्स 2026 बैडमिंटन मेन्स डबल कैटेगरी. जी हाँ, द थाई पेयर ऑफ पकोपो एंड पीरा चाय सुखपू वन बाय अ मार्जिन ऑफ 21-12, 19-21, 14-21. अ वेरी बिग अपसेट फॉर द इंडियन बैडमिंटन कंट्री.

0: contingent and for the badminton fans. After a dominant win in the first game, Satvik Sairaj and Chirag Shetty lost the second game after a neck-to-neck fight with Pakapo and Sukhpun. The Thai pair won by a close margin of 21-19 the second game. The match then got tied at 1-1, and in the final deciding game, the Thai pair were just too good for Satvik Sairaj and Chirag Shetty, and India went down 14-21 in the decider to let the Thai pair win over our Indian defending champions.
1: अच्छी खबर दे दूं साक्षी, यहाँ बैडमिंटन में भारत के मिश्रित युगल में ध्रुव और तनिषा की क्वार्टर फाइनल की जो जोड़ी थी क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। जी हाँ, ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो की जोड़ी ने एशियन गेम्स के बैडमिंटन व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 गो सून हुआट और लाई शोन जैमी की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 22-20 24-22 से शिकस्त दे दी है। दोनों गेमों में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। भारतीय जोड़ी ने दबाव के पलों में शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में 27 सितंबर को ध्रुव और तनिषा का सामना विश्व नंबर 1 फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग की चीनी जोड़ी के खिलाफ होगा।
0: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि एक और निराशाजनक खबर हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं, जहां पर हमने देखा आज मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल्स हो रहे थे, अब वो फिलहाल समाप्त हो गए। इसमें भारत की तरफ से दिया चितले और मनु शाह वो रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड दे वर फाइटिंग अप अगेंस्ट द चाइनीज यिंगशा सुन एंड चू क्विन वैंग, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑलमोस्ट इंडिया का जो सफर रहा है वो खत्म होते होते कगार से आते आते बच गया, क्योंकि पहले तीन सेट्स हम यहाँ पर कहेंगे जो पहले तीन गेम्स थे वो चाइना ने अपने नाम कर लिए हैं अभी तक 11-8 11-5 11-8। इसलिए ये सेमीफाइनल का मुकाबला दोस्तों अभी तो फिलहाल जारी है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि चाइना ने एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग शुरुआत भारतीय जोड़ी पर करी है पहले तीन गेम्स अपने नाम करके शाहिद।
1: जी, यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको भारत की एक उम्मीद निरुपमा देवी 63 किलोग्राम के वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में सातवां स्थान हासिल कर पाई हैं। उम्मीदें थी कुछ बेहतर करेंगी, कुल 217 किलोग्राम उन्होंने वजन उठाया। निरुपमा ने इस मैच में 93 किलोग्राम वजन उठाया, हालांकि 95 किलोग्राम उठाना चाहती थी लेकिन वहां नाकाम रही। किलियन जर्क में 124 किलोग्राम का भार उठाया, इस तरह उनका कुल स्कोर 217 किलोग्राम था, जो मेडल टैली में यानी मेडल के स्थान पर आने के लिए पोडियम पाने के लिए काफी नहीं था।
0: जी, स्विमिंग की दुनिया से भी आपको बता दें कि यहाँ पर काइंड ऑफ मिक्स न्यूज हम कह सकते हैं आई है, बिकॉज सजन प्रकाश प्रोग्रेस्ड आफ्टर फिनिशिंग 6th ओवरऑल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स विद अ टाइम ऑफ 2:00.94, लेकिन जब फाइनल्स में उन्होंने आज प्रवेश किया तो वेटरन स्विमर फिनिश 7th इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई। ही डिड नॉट स्टार्ट इन द 100 मीटर्स बटरफ्लाई बट केम अप विद अ वैलियंट एफर्ट टुडे। वहीं पर अगर बात करें 21 साल के ऋषभ दास की, तो उन्होंने अपने निजी स्कोर को कह सकते हैं निजी टाइमिंग को और बेहतर कर लिया पिछली बार से, बिकॉज वंस द फाइनल्स ऑफ द मेंस 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट स्टार्टेड बोथ द इंडियंस व्हिच इज ऋषभ दास एंड उत्कर्ष पाटिल वर इन दिस फाइनल बट नीदर फिनिश्ड अमंगस्ट द टॉप थ्री। द 21 ईयर ओल्ड ऋषभ क्लॉक्ड 1:58.77 इन द 200 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल्स टू फिनिश 6th, टेकिंग मोर देन अ सेकंड ऑफ हिज प्रीवियस मार्क। वहीं पर उत्कर्ष पाटिल वाज 7th clocking a time of 2:00.94, so he was basically Rishabh Das was overall able to better his timing from the last time.
1: एक टेबल टेनिस से भी खबर दे देते हैं। महिला युगल में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यशस्विनी घोरपड़े और दिया चितले की जोड़ी राउंड ऑफ 16 में चीन की फैन शुहान और चेन ई के खिलाफ 0-3 से हार गई। चीनी जोड़ी ने मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था और तीनों गेम 11-7 11-5 11-8 से अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ यशस्विनी और दिया की महिला युगल स्पर्धा में चुनौती समाप्त हो गई। वहीं एक और खबर दे देते हैं, हरमीत देसाई और सत्यन गणासेकरन की जापान के जो खिलाड़ी हैं सेरा मासुयामी और शुनके तोगामी के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की थी लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। भारतीय जो जोड़ी थी उसे सीधे गेमों में 5-11 9-11 9-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।
0: एंड अ वेरी क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग इन व्हिच इन द वुमेन्स 54 kg राउंड वी फाउंड पैंग चोल मी डिफीटिंग प्रीति 5-0 इन द राउंड ऑफ 16 एंड अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम द बॉक्सर। ऑफ कोर्स द पेरिस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रूव टू गुड फॉर द इंडियन प्रीति आउट देयर एंड शी लॉस्ट स्ट्रेट टू हर बाय गेटिंग डिफीटेड 5-0। सो निराशाजनक खबरें जरूर आती हुई याद दोस्तों इस अपडेट के अंदर, लेकिन उम्मीद है कि शाम को जब एथलेटिक के इवेंट्स आएंगे तो जिस प्रकार से आज एशियन गेम्स में दिन की शुरुआत हुई थी सिल्वर और गोल्ड मेडल के साथ, हम आज दिन की समाप्ति भी कुछ मेडल्स

0: साथ जो आज हमने कमाए हैं उसके साथ कर पाएंगे। फिलहाल के लिए शाहिद और मुझे साक्षी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपसे शाम के 4:30 बजे एक बार फिर से विद ऑल द लाइव अपडेट्स। फॉर नाउ थैंक यू एंड गुड बाय।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: जी बिल्कुल, अब बताना चाहूंगा बैडमिंटन की खबर है। हालांकि बैडमिंटन की अच्छी खबर है कि भारत के लिए, भारत के नजरिए से देखा जाए तो बेहद खास खबर है। एशियन गेम्स के बैडमिंटन के महिला युगल में भारत के लिए जो टिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 में भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग के त्यांग यू यान और लुई लोक लोक की जोड़ी से हुआ था। टीसा और गायत्री ने पहला गेम शानदार तरीके से 21-16 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में हांगकांग की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 21-16 से गेम जीतकर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्णायक तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टीसा और गायत्री ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और तीसरा गेम भी 21-16 से जीत लिया। इस तरह भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। अब राउंड ऑफ 16 में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के सामने जापान की विश्व नंबर 3 जोड़ी युकी फुकुशिमा और माइसू मासुमो की जोड़ी होगी। यानी अगले दौर में भारतीय जोड़ी के सामने दुनिया की शीर्ष जोड़ियों में से शामिल एक मजबूत प्रतिद्वंदी मिलने वाली है।
1: होपफुली शायद उम्मीद करते हैं कि भारत का सफर यहाँ पे अच्छा बने। लेकिन वुमेन्स डबल्स के फर्स्ट राउंड मैच में सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम वर अप अगेंस्ट फेब्रियाना कुसुमा और मेलियासा पुष्पित तसारी ऑफ इंडोनेशिया, वेयर द इंडियन डुओ लॉस्ट 9-21, 5-21 टू इंडोनेशिया इन स्ट्रेट गेम्स, थेरबाय लूजिंग द मैच 2-0 टू इंडोनेशिया। तो मेरे पास तो बैडमिंटन की दुनिया से आपको कुछ अच्छी खबरें देने के लिए नहीं थी जैसे शाहिद ने दी, लेकिन आई एम श्योर शाहिद हैज मोर अपडेट्स टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स।
0: जी बिल्कुल, तैराकी की बात कर लेते हैं। ऋषभ दास ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हालांकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा काम नहीं आया उनको इस इवेंट में, एशियन गेम्स में, एशियाई खेलों में भारतीय तैराक जो ऋषभ दास हैं, उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए, हालांकि शानदार प्रदर्शन जरूर रहा लेकिन पदक जीतने से चूक गए और छठे स्थान पर है। लेकिन उन्होंने 1:58.77 का समय निकालकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो उनका अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, उसे तोड़ दिया। 19 वर्षीय ऋषभ ने अपने पुराने रिकॉर्ड में 1 सेकंड से ज्यादा का सुधार किया। वहीं भारत के उत्कर्ष पाटिल 2:00.94 के समय के साथ 7वें स्थान पर रहे।
1: जी, और टेबल टेनिस की दुनिया से आपको बता दें कि मिक्स डबल्स के अंदर आज भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। जी हाँ, मनुष शाह और दिया चितले लॉस्ट 8-11, 5-11, 8-11, 2-11 टू चाइनाज वांग चू क्वीन एंड सुनजीत शाह इन द मिक्स डबल सेमीफाइनल्स। क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला था, ये कह सकते हैं हाँ कि भारत ने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया, लेकिन चाइना के दोनों ही अपोनेंट्स भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से आज हावी हो गए थे। कंप्लीट डोमिनेशन उनका देखने को मिला भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर, प्रिटी मच गोइंग बाय द वे द चाइनीज फंक्शन एंड प्ले द गेम ऑफ टेबल टेनिस, एंड एज अ रिजल्ट द इंडियन डुओ लॉस्ट द एंटायर गेम in four entire match in four straight games, making the lead to be 4-0 and thereby settled in with the bronze medal. So congratulations to the Indian mixed doubles team who got us the bronze today in India.
0: जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई थी लगातार मेडल मिल रहे थे, शाम ढलते ढलते उस मेडल में एक और मेडल जुड़ गया है। उम्मीद करेंगे अभी जो समय और बचा वहां भी कुछ अच्छी खबर आए। फिलहाल एशियन गेम्स की इस घंटे की अपडेट में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरी साथी साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: हाँ जी बिल्कुल, म्यूजिकली और 5:02 हो चुके हैं। मैं सोनाली आपके साथ हूँ और 8 बजे तक अपने जो सफ़र है ये काफ़ी म्यूजिकल और बेहतरीन होने वाला है, इस बात की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। नंबर बता देती हूँ, 8657661071 ये हमारा नंबर है जिसपे कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज अनंत चतुर्थी है तो कहते हैं ना कि मुंबई का तो खैर सारा माहौल ही बदला हुआ है। हम भी इस माहौल में कहीं ना कहीं खो जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ आपका साथ ज़रूरी है। चलिए इस बात को लेकर चलते हैं तुम तक और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। गुड इवनिंग।

5:13 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। मैं सोनाली आपके साथ हूं और आज बप्पा के विसर्जन की वजह से, कहते हैं ना कि पूरी मुंबई में एक अलग तरह का जोश है कह सकते हैं, और एक पिछले जो 10-12 दिन से पूरा एक मोदक लड्डू और स्वीट्स का, कहते हैं ना कि एक अलग, हर एक इतनी खुशी होती है कि हम, मतलब बप्पा को हम एक इस तरह से मानते हैं कि वो हमारे घर में आए हैं, और घर में जितनी ज़्यादा खुशियाँ हम कह सकते हैं, फिर वो अथर्वशीर्ष का पाठ बहुत सारे लोग करते हैं, 21 मोदक का नैवेद्य चढ़ाते हैं, अलग अलग लड्डू बनाते हैं, लोगों से एक दूसरे से मिलते हैं, जो हम आम तौर पे सिर्फ फ़ोन के बिना, फ़ोन पे जो कॉन्वर्सेशन होता रहता है सबका, इस दौरान लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, दर्शन के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं, और एक अलग तरह का माहौल बन जाता है, जिसे कहते हैं ना एक अध्यात्म में भी या एक प्रार्थना में भी, जब सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो शक्ति होती है, वो अलग होती है। 5:14 आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को, और साथ साथ में आप भी अपनी कोई बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं। जो मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं उनके बारे में मैं बता दूं, जो आए हैं, विजेंद्र गटोल का अकोला से, राजेश शाह का मुलुंड से, प्रणव शिंदे जी का मैसेज आया है, अशोक पाटिल का वर्ली से मैसेज आया है, साथ में रघुनाथ खन्नूकर का कोल्हापुर से मैसेज आया है, स्मिता और विवेक नेवालकर का मैसेज आया है, प्राची शिंदे, चेतन कुमार, पंकज मोहड़, रामदास तांबे का डोंबिवली से मैसेज आया है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं। आप भी अभी ये रेडियो स्टेशन कहां से सुन रहे हैं ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके भी घरों में या आसपास में अगर गणेश विसर्जन की धूमधाम हो रही हो तो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। अगला गाना आप सभी के लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

5:26 हो रहे हैं। 5:30 आप सुनेंगे एशियन गेम्स से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि हमने और कितने पदक जीते हैं और कितने मेडल्स और हासिल करने की उम्मीद जग पड़ी है। बने रहेगा हमारे साथ कुछ गाने कुछ बातें। और हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया है आपकी तरफ से ही। मैसेज आया है कि गणपति जो बप्पा है ना, वो

कि रात का भोजन होगा विसर्जन के बाद, तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो।

0: समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले खुशखबरी आपको बता देते हैं एथलेटिक्स की दुनिया से, जहाँ वुमेन्स शॉटपुट में मनप्रीत कौर हैज बॉट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। जी हाँ, विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 meters मनप्रीत कौर ने भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। इसके साथ ही भारत अब मेडल टेबल में कुल मिलाकर 21 मेडल्स कमा चुका है। चाइना ने दोनों ही गोल्ड और सिल्वर अपने नाम कमा लिए इन द वुमेन्स शॉर्ट पुट। आगे बढ़ेंगे मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल पे। गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, दे विल नो मोर बी टेकिंग पार्ट इन द फाइनल्स टुडे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे कुडंट इवन क्वालिफाई और फिनिश ऑफ इन अ नाइस मैनर फ्रॉम द सेमीफाइनल। आपको एक और मेडल अलर्ट यहाँ पर दे देते हैं। गुलवीर सिंह ने सिल्वर बैक कर लिया एथलेटिक्स के मेन 10,000 मीटर के अंदर। अनदर medal coming for India and this time it is the silver medal that Gulveer Singh has bought for the Indians. And 800 meter finals in heptathlon, mein aapko bata de, Pooja finished in the event in women's heptathlon with a timing of 2 minutes 16.43 seconds while compatriot Anamika clocked in 2 minutes 18.06 seconds to finish third in the events. Lekin unke efforts kaafi nahi the, Pooja isi wajah se 6th spot par finish kiya unhone heptathlon ke andar, wahi Anamika ne 8th sthan par khatam kiya. Aur last mein chalte chalte एथलेटिक्स के अंदर आपको बता देते हैं कि भारत की सिंधु श्री गणेशा इज आउट ऑफ द वुमेन्स पोल वर्ल्ड फाइनल विदाउट अ वैलिड मार्क। शी फेल्ड टू क्लियर 3.85 मीटर्स इन 2 अटेम्प्ट्स बिफोर आल्सो मिसिंग आउट एट 4 मीटर्स। शाहिद
3: जी बिल्कुल, अभी आपने गुरवीर सिंह का जिस तरह जिक्र किया, उम्मीद थी कि वो पोडियम फिनिश करेंगे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 10,000 मीटर की जो दौड़ थी उसमें उन्होंने एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीत लिया है। मेडल की बात चल रही तो आज जो जिस तरह से दिन की शुरुआत हुई थी, भारत ने गोल्ड जीता था, उसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दूं जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं एशियन गेम्स में। भारत के लिए कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में फाइनल

0: शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, एशियन गेम 2026 में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले क्रिकेट में महिलाओं ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। अगर आज के शूटिंग के मुकाबले की बात करें तो अंतिम स्कोर जो रहा था 484.6 रहा था, जो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया से 6.6 अंक अधिक था। इससे अंदाजा लग सकता कितना बेहतरीन भारत ने प्रदर्शन किया था। वहीं एक और खबर देते बॉक्सिंग के रिंग से, जहां सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही सचिन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। लेकिन प्रीति पवार से उम्मीद थी वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में वो राउंड ऑफ 16 में ही उनका सफर खत्म हो गया। 0-5 से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।
1: जी, और हॉकी की अगर बात करें तो खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज जापान को 3-1 से हरा दिया। लाल रेमसियामी ओपन द स्कोरिंग बिफोर इशिका डबल्ड इंडिया लीड विद नवनीत कौर एडिंग टू द थर्ड गोल। और इसके साथ ही अब आपको ये बता दें कि भारत सेमी फाइनल्स में तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी उनका आखिरी मैच पूल मैच बचा हुआ है सिंगापुर के साथ, एंड उसके बाद भारत का सामना या भारतीय महिलाओं को दोस्तों हम देख सकेंगे सेमीफाइनल हॉकी मैच के अंदर।
0: जी बिल्कुल देख सकेंगे। और जिस तरह से आज का दिन रहा, कई भारत के मेडल्स आए हैं, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो अभी भी जो मेडल आया है गुलवीर सिंह का, उसने शाम को सुहानी बना दिया है।
1: ऑफकोर्स शाम को तो सुहानी बना ही दिया है, क्योंकि हम मेडल्स की आज बात ही कर रहे थे। तो आपको ये भी बता दें कि स्क्वाश की दुनिया से भी आज हमें काफी सारी खुशखबरी मिली थी, बिकॉज जोशना चिनप्पा ने तो हमें एक मेडल का एक तरीके से कहते हैं ना भारत को आश्वासन या रिश्योरेंस दे दिया है, क्योंकि अब जोशना चिनप्पा और उनके साथ साथ जो उनके पार्टनर वहां पर होंगे इस गेम में, विच इज वी सेंथिल कुमार, वो आज हमने देखा कि कैसे मिक्स डबल स्क्वाश सेमीफाइनल्स में स्ट्रेट गेम विन करके 11-3 11-5 से अपने फिलिपिनो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आगे बढ़ गए। और अब यहां से कम एक ब्रॉन्ज तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही यहां पर हम अगर आपको बताएं शाहिद, एक बहुत जरूरी चीज जो थी वो यही थी कि हम देखने वाले हैं यहां पर वीर चौटरानी, जो कि हार गए थे आज मोहम्मद इरफान से पाकिस्तान के इन द मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स 1-3। अब मोहम्मद इरफान का सामना होगा अभय सिंह से इन द सेमीफाइनल ऑफ मेंस सिंगल्स। यस, क्योंकि अभय सिंह ने आज जापान के सुकुई को 3-0 से हरा कर सेमीफाइनल में मेंस सिंगल्स के प्रवेश किया, और उनका सामना अब होगा मोहम्मद इरफान से।
0: जी बिल्कुल, और क्या घटित होता अगले एक घंटे में हम इसकी जानकारी ठीक 6:30 पर देंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी साक्षी मांडवाल को इस घंटे के अपडेट के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

5:36 और साथ साथ एक बात आपको बता दूं कि हालांकि मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट आ रहता है आज होने वाला है हम तुम वो 7 बजे के बाद होता है, तो वो रिक्वेस्ट जो आपकी है ना वो 7 बजे के बाद मुझ तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल हम जो अपने टॉपिक के साथ में या फेस्टिविटी के साथ में जो गाने हैं उसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि आज चूँकि विसर्जन का दिन है तो गाना तो बजना चाहिए, तो जस्ट बजना चाहिए। आप सभी के लिए गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।

5:43 हो रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी बात, मतलब कहते हैं ना, ध्यान में जब हम कहते हैं कि आज विसर्जन का दिन है, तो विसर्जन में जब गणपति बप्पा का पूरा प्रोसेशन रहता है तो सब लोग बड़े ढोल ताशे के साथ में रहते हैं और उसमें कुछ परफॉर्मेंसेस रहते हैं। तो कहते हैं ना कि मैंने एक जगह पढ़ा कि ये विसर्जन का जो जुलूस है, इसके हम स्वीकृति नृत्य के तरह से भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये हमें बताता है कि किस तरह से किसी को अगर हमें विदा करना है तो वो भी कितने प्यार के साथ किया जा सकता है और वो विदाई भी हम स्वीकृति के साथ कर सकते हैं। यानी कि कहते ना कि वो डिटैचमेंट वैसा नहीं है कि चलो कोई चला गया, लेकिन वो एक उम्मीद है कि हाँ, हमारा जो प्यार है ये बरकरार रहेगा। और इसी बात के साथ में ना, हम कहते ना कि बापा का जो आगमन होता है उसके लिए पूरे हम साल भर इंतज़ार करते हैं, और एक ये जो 10-12 दिन के बाद जब ये विसर्जन का दिन आता है तो हाँ, आंखों में ज़रूर आंसू रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी रहता है कि बापा पुढ़चा वर्षी लव करिया, और तो वैसा होता भी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने शो को, और अगला गाना प्ले कर रही हूँ मैं अब, कौन सा वाला, ये वाला आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे, है ना। तो क्योंकि अभी ही अगस्त का महीना गया है और बहुत सारे जगह पे इस तरह का जो कहते हैं ना एक फेस्टिविटीज़ रहती है, और उसमें एक ये भी रहता है कि ये जो महिलाओं के जो खेल रहते हैं उसमें एक ये भी रहता है। सुनिए, एंजॉय करिए।

शाम के 6 बजने को है हमारा प्रोग्राम लव यू जिंदगी, जारी रहेगा 5 मिनट और उसके बाद समाचार, और समाचार के बाद होगा प्रोग्राम अंदाज़े बयां। और जब हम बात कर रहे हैं पूरे इस लव यू जिंदगी में कि पापा का विसर्जन आज हो जाएगा, लेकिन एक कहते हैं ना, एक मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस बुद्धि और ज्ञान के देवता को हमें हमारे अंदर जागृत रखना है, ताकि हम पूरे साल कहते हैं ना, एक अच्छे विवेकपूर्ण या हम कॉन्शियसली जिंदगी को अच्छे तरह से गुजार सके, कुछ ऐसे निर्णय ना लें जिसको बाद में, जिनके ऊपर हमें रिग्रेट करना पड़े। क्योंकि हम हमेशा से ही कहते रहे हैं कि जो गणपति बप्पा है ये बुद्धि और ज्ञान की देवता है, सद्बुद्धि, मतलब कहते हैं ना भगवान के वहाँ जाके, हे भगवान सद्बुद्धि देना, तो वो जो बुद्धि है वो ही हमें अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। सो उस बात के चलते बप्पा को अपने अंदर जागृत रखना है और अच्छे काम करते रहना है साल भर। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। इसी बात के साथ लव यू जिंदगी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप बने रहिएगा और सुनते रहिएगा क्या, हमारा प्रोग्राम 107.1 FM रेनबो पर। इस आर का लास्ट गाना प्ले कर रही हूँ और फिर 6:10 के बाद हम थोड़े से कहते ना, अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद में से, आप जो भेज रहे हैं उसमें से भी कुछ गाने प्ले कर सकूँ। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 6:15 हो चुके हैं, प्रोग्राम जिसका नाम है अंदाज़ बयां अब शुरू करते हैं। और कहते हैं ना कि हर एक अंदाज़ बात कहने का जो होता है वो अलग अलग होता है, और अपने अंदाज़ में जब हम सही हो, अपने बात जब कहने का तरीका सही हो, तो बहुत सारी बातें उसको एक सही मायना मिलता है, एक सही अंदाज़ मिलता है। एक सर्वेश तिवारी की लिखी हुई कविता की दो लाइनें पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद हम हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी, मतलब कविता काफ़ी बड़ी है लेकिन उसकी एक दो लाइनें हैं कि जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा, जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा, सबके अपने कुरुक्षेत्र है, लेकर शस्त्र उतरना होगा। तो हर एक इंसान की अपनी एक अलग बैटल होती है, अपनी एक लड़ाई होती है, और हर एक इंसान का अपने कुरुक्षेत्र होता है, और अपने उस कुरुक्षेत्र में हर एक इंसान को सत्यता के साथ उतरना होता है और अपनी लड़ाई लड़नी होती है। इस खूबसूरत सी लाइन के साथ में, मतलब कविता की दो पंक्तियों के साथ में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

6:25 हो रहे हैं, 6:30 होंगे एशियन गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए स्पोर्ट्स अपडेट, और फिर लौट कर आएंगे आपके साथ में अंदाजे बयां को लेकर, और आगे हम और गाने और आपकी बातें साथ रहेंगे। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। और हाँ जी, बहुत सारे लोग मुझे बहुत अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, सो मैं सोनाली हूँ आपके साथ में, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। एथलेटिक्स में भारत के लिए बड़ी खबर आई है। बारानिका एलंगुवन ने एशियन गेम्स 2026 की महिला पोल वॉल्ट में, जो पोल वॉल्ट की स्पर्धा होती है, उसमें कांस्य पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास गढ़ दिया है। बारानिका ने 4.15 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार की। कजाकिस्तान की पोलिना इवानोवा ने भी 4.15 मीटर की ऊंचाई पार की। दोनों खिलाड़ी 4.25 मीटर की ऊंचाई पर सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद कांस्य पदक साझा किया गया। इस उपलब्धि के साथ वरानिका एलंगुवन एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारत के लिए यह एथलेटिक्स में एक ऐसी उपलब्धि है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
2: जी शायद, थैंक यू सो मच। और इसी अपडेट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे एथलेटिक्स में, क्योंकि आज मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि विम्स 400 मीटर फाइनल में भारत की प्राची भी क्वालिफाई कर चुकी है विम्स 400 मीटर फाइनल्स के लिए, आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन अ हीट इन 53.46 सेकंड्स। शी एडवांसेस एज वन ऑफ द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट रनर्स आउटसाइड द टॉप टू फिनिशर्स इन द थ्री हीट्स। ईरान जहरा विंस द थर्ड हीट इन 52 सेकंड्स। अर्लियर इंडियाज किरण हैड फिनिश्ड सेकंड इन अ हीट इन 53.44 सेकंड्स टू क्वालिफाई डायरेक्टली। ये भी आपको बता दें कि द टॉप टू फिनिशर्स फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री हीट्स क्वालिफाइज डायरेक्टली फॉर द फाइनल विद द नेक्स्ट टू फास्टेस्ट एथलीट्स अक्रॉस ऑल थ्री हीट्स आल्सो एडवांसिंग। वही मेंस 400 मीटर फाइनल में विशाल टीके का एक बहुत स्टुपेंडस रन रहा उनके हीट में टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, बिकॉज ही फिनिश्ड इन द फर्स्ट स्पॉट इन द हीट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। वेल, द इंडियन वन हिज मेंस 400 मीटर हीट इन 45.27 सेकंड्स टू स्टॉर्म इनटू द फाइनल। विशाल पिप्स कतार अमर इब्राहिम बट जस्ट 0.04 सेकंड्स। इंडिया विल नाउ हैव रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द मेन एंड वुमेन्स 400 मीटर फाइनल्स। शाहिद
1: जी, ट्रैक एंड फील्ड पर भारतीय खिलाड़ी आज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक पे चलते हैं, एथलेटिक्स की बात करते हैं। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में जो शानदार प्रदर्शन किया है, रजत पदक जीता, उसकी बात कर लेते हैं। एशियन गेम 2026 में भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28:29.38 सेकंड का समय निकाला। वहीं बहरीन के बिरहानु बालवेव ने 28:27.51 का समय निकाला और स्वर्ण पदक अपने खाते में जोड़ा, जबकि अल्बर्ट किप्टू ने 28:34.38 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यह एशियन गेम्स में गुलवीर सिंह का दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने हांगझाउ 2023 में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था और इस बार उन्होंने अपने पदक का रंग बदला है। गुलवीर सिंह भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। इस साल ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था। खास बात यह कि आईची नागोया एशियन गेम्स में पुरुषों और महिलाओं दोनों में 10,000 मीटर की स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीता। महिलाओं के 10,000 मीटर में, जैसा हमने पहले बताया था, सीमा कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, यानी महिलाओं में कांस्य पदक मिला। पुरुषों में हमें 10,000 मीटर में रजत पदक हासिल हुआ।

0: हाँ जी, एंड टू ब्रिंग द बिग न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स एंड वुमेन्स शॉट पुट वंस अगेन फॉर ऑल आवर लवली लिसनर्स, मनप्रीत कौर ने भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 17.17 meters. यस, इट वॉज अ मोमेंट फॉर एवरी इंडियन टू फील प्राउड बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली मेक अस ऑल फील वेरी हैप्पी. चाइना को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही वुमेन्स शॉट पुट पर प्राप्त हुआ. मनप्रीत कौर के नाम रहा आज का ब्रॉन्ज मेडल. एंड आपको ये भी बता दे कि दिस डेफिनेटली ये इस जीत के साथ उस समय भारत के हो गए थे 21 मेडल, लेकिन क्योंकि उसके बाद भारत का और मेडल भी आ गया एथलेटिक्स में, तो भारत की मेडल टैली राइज होकर बढ़ गई टू 22 मेडल्स. बट एक और चीज, मेंस 100 मीटर सेमीफाइनल के अंदर गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही 100 मीटर सेमीफाइनल से बाहर हो गए. 10.32 सेकंड्स की टाइमिंग रही गुरिंदर वीर सिंह की और अनिमेश कुजूर की टाइमिंग रही 10.38 सेकंड्स की. सो दैट वाज एन अपसेटिंग डिफीट और शुड बी से एन अपसेटिंग न्यूज बिकॉज इंडिया वुड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द फाइनल्स ऑफ द मेंस 100 मीटर्स टुडे. शाहिद
1: जी, आपने मेडल टेबल की बात की, भारत की बताया, जहां पर भारत ने 2 गोल्ड 9 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज समेत 22 पदक जीते हैं. वहीं अगर मेडल टेबल पे देखें तो सबसे ऊपर अभी भी चीन बना हुआ, 97 गोल्ड 36 रजत पदक है, इसके अलावा 24 कांस्य पदक सहित 157 पदक जीतकर सबसे ऊपर पहले पायदान पर बना. जबकि जापान की बात करें 27 स्वर्ण 42 रजत 44 कांस्य सहित 113 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर. जबकि कोरिया की बात करें तो 13 स्वर्ण पदक 17 रजत पदक 34 कांस्य समेत 64 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है.
0: जी, थोड़ा सा खुशी भी होती है और हैरानगी भी होती है कि अगर हम देखें पीपल्स रिपब्लिक चाइना इज गॉट 97 गोल्स. वील टॉक अबाउट दैट शायद इन द नेक्स्ट अपडेट बिकॉज अभी वक्त हो गया है अपने सारे दोस्तों से विदा लेने का. मैं साक्षी मांडवाल और शाहिद आजमी फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं. आपके साथ एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे आज के दिन की आखिरी अपडेट के साथ जुड़ेंगे लाइव फ्रॉम आकाशवाणी ब्रिंगिंग टू यू द ऑन गेम एशियन गेम्स 2026. थैंक यू सो मच.
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया.

6:35 हो चुके हैं और अंदाजे बयां प्रोग्राम चल रहा है, और अभी काफ़ी सारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि अब अंदाजे बयां में थोड़े हट के गाने बजाते हैं, मैंने एक क्लासिकल चुना था और फिर दो सिंपल गाने थे, लेकिन आप लोगों ने इतने सारे मैसेज भेजे कि नहीं आज विसर्जन है तो हमें थोड़े फास्ट ट्रैक गाने चाहिए, तो चलिए, और थोड़ा मैंने कहा भी था कि हम थोड़े से 90s की तरफ चलेंगे इसके आगे, तो इस बात के चलते थोड़े से फास्ट गाने और कुछ ऐसे गाने जो हमें अपने आप ही थिरकने पे मजबूर कर देते हैं, तो ऐसे गानों के साथ में अब हम कंटिन्यू करेंगे। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे कि आप हम तक आपके मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। साथ साथ 7:10 पर हम तुम प्रोग्राम होगा, जिसमें रिक्वेस्ट आर होगा। आज खास मैं कोई थीम लेकर नहीं आई हूँ, जिसके चलते आपको कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे भी अपनी पसंद का गाना सुनना चाहे, जो भी एरा से, हाँ बहुत ज़्यादा पुराना गाना नहीं, लेकिन 70s 80s 90s जो गाना आपकी पसंद का है आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और चूँकि ये प्रोग्राम लाइव चलता है तो आपकी पसंद का गाना ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे। सो हम बिल्कुल खुदगर्ज नहीं होंगे आपकी रिक्वेस्ट को प्ले करने में, और खुदगर्ज सुनकर ये गाना ज़रूर आपके लिए प्ले करेंगे। सुने, बने रहेगा हमारे साथ।

याराना फिल्म से ये गाना आप सभी के लिए प्ले किया था। और कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स हमेशा से पॉपुलर रहे, लेकिन इस मूवी में अमजद खान साहब और अमिताभ बच्चन थे, और अमजद खान जो थे इनके दोस्त के रोल में थे, और उनका इतना ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला रोल था। और कैसा रहता है ना कि कोई एक किरदार इतना पॉपुलर हो जाता है कि हम वो मूवी देखते समय भी हमें लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होगा, ये बाद में पता चलेगा किसने कुछ तो भी गड़बड़ की है। याराना मूवी अपने आप में एक, और इस मूवी की जो एक और एक बात मुझे बहुत खास लगती है इसमें, मतलब कई सारी मूवीज़ हैं ऐसी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब आम तौर पे हम उनको ऐसे एंग्री यंग मैन और बहुत कहते ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स के साथ हमने उनको जाना है, पहचाना है और बहुत पसंद भी किया है, लेकिन उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो कई सारी फिल्मों में इंक्लूडिंग याराना बहुत बहुत ज़बरदस्त है। उसमें वो जब वो कहते हैं कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कई बार वो दोहराते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं इस पिक्चर में जो कि बहुत ज़्यादा याद करने जैसी है। अगला गाना प्ले कर रही हूँ मैं अमिताभ बच्चन साहब का ही है। इस फिल्म में डैनी साहब थे उनके साथ में। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी पिक्चर थी, खुदा गवाह। तो इसमें भी उनका रोल जो था डैनी का वो इतना अच्छा था उनके दोस्त के रूप में, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं इन्होंने तो हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर किए हैं तो ये पता नहीं अब ये कहीं ना कहीं आखिर में जाके कहीं दगा दे देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छे दोस्त का रोल किया था। सो दोनों ही फिल्मों में, मतलब याराना में अमजद खान साहब और इधर खुदा गवाह में डैनी,

तो ये दोनों हमेशा से नेगेटिव कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर प्ले किया था, तो ये दोनों गाने पिक्चरें सोचा आपके लिए गाने प्ले करती हूँ। 7 बजे समाचार, समाचारों के बाद लौट कर आएंगे हम प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है हम तुम, आप ही की रिक्वेस्ट के गाने आप ही के नाम होंगे। 8657661071 ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप, मैक्सिमम लोगों के पास सेव्ड है। जो लोग शायद आज पहली बार सुन रहे हैं या रिक्वेस्ट पहली बार भेजने वाले हैं उनके लिए दोहराया था, और तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह। सुनिए, बने रहिए हमारे साथ।

0: वाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स ही है और आप ही का ये पूरा आर रहेगा जिसमें आपकी पसंद के गाने प्ले होने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस गाने के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पुराने ज़माने का गाना है, 60s रादर हम कह सकते हैं, 60s 70s के बीच का। तो शुरुआत हम इस गाने से कर रहे हैं लेकिन आप अलग अलग अंदाज के गाने भेज सकते हैं। चूँकि आज SP बाला सुब्रमण्यम साहब की डेथ एनिवर्सरी है तो उनके भी लिए काफ़ी सारे उनकी स्मृति को याद करते हुए भी कुछ गाने आ रहे हैं, वो भी हम प्ले करेंगे। साथ ही साथ आप आपकी पसंद के गाने भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए और एक गाना जो मतलब हम शुरुआत करें जिस गाने के साथ में, तो SP बाला सुब्रमण्यम साहब ने मतलब उन्होंने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रफ़ी साहब का एक गाना रोज़ मतलब वो चाय की दुकान से सुनते हुए जाते थे और उन्होंने उस गाने को खुद ने भी गाया था और उन्होंने कहा था कि रफ़ी साहब ने जिस अंदाज से ये गाना गाया है वो मतलब एक अलग ही है, आप किसी और दुनिया में चले जाते हो वो गाना सुनते समय। तो फिर वही गाना क्यों ना हो जाए। और SP साहब की भी याद में और रफ़ी साहब को भी याद करते हुए ये गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 1858 साली राणीनं भारताचा राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला। त्याची स्मृती म्हणून वस्तू संग्रहालयाचं नाव व्हिक्टोरिया म्युझियम असं ठेवण्यात आलं, तर बागेला व्हिक्टोरिया गार्डन्स हे नाव देण्यात आलं।
2: या सैन्याच्या निवासासाठी जुन्या सैनिकी छावण्यात थाटलेला म्युझियमचा संसार 24 तासांच्या आत गुंडाळून ती जागा सैन्याच्या ताब्यात देण्याचा हुकूम सुटला। तिथल्या वस्तू टाउन हॉल

0: कंट्रीब्यूशन दिया है कि आज हम उनकी बातों को, उनके गानों को याद करते हुए अपने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा म्यूजिकल बना लेते हैं। सो इन सब बातों के साथ में अब हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है लेकिन ज़रूरी भी उतनी ही होती है, क्योंकि जब आप अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं या अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाते हैं तो ज़रूरी है कि हम भी अपनी बात या अपने अंदाज का आप तक पहुँचाएं। तो सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो। कुछ ही देर के बाद आप ही के रिक्वेस्ट के सारे गाने प्ले करूंगी इसी चैनल पर।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवार। तो चलिए इस घंटे की आज की अंतिम अपडेट की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले एथलेटिक्स की, जहां 400 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हीट जीती और फाइनल में जगह बनाई। खास बात यह रही कि तीनों हीट में उनका सबसे तेज, यानी सबसे तेज जो उनकी दौड़ थी वो तीनों हीट में सबसे तेज रहे। महिलाओं की 400 मीटर में किरण पहल और प्राची ने भी फाइनल का टिकट कटाया। किरण ने 53.44 सेकंड और प्राची ने 53.646 सेकंड का समय लिया। दोनों अब कल फाइनल में उतरेंगी। पुरुषों के हैमर थ्रो स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी। दमनीत सिंह का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 67.56 मीटर रहा, जो उन्होंने शीर्ष 8 में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त उनके लिए नहीं रहा है। प्रवीण कुमार ने 65.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया लेकिन वो 11वें स्थान पर है। शीर्ष 8 में जगह बनाने के लिए 68.10 मीटर का थ्रो चाहिए था। खास बात यह है कि दोनों भारतीय खिलाड़ी इससे पहले इस दूरी को पार कर चुके हैं। इस तरह हैमर थ्रो के फाइनल में भारत का अभियान निराशाजनक देखने को मिला, जिस तरह से शुरू हुआ है।
3: जी, एंड नाउ गिविंग यू सम मोर अपडेट्स फ्रॉम हाउ द डे स्टार्टेड ऑफ टुडे। सिंस वी आर रैपिंग अप द डे टुडे, शूटिंग में लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कमलजीत एंड सुरुचि इंदर सिंह वन एज द गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम फाइनल इवेंट, मेकिंग द गोल्ड टैली फॉर इंडिया टू 2 मेडल्स। एंड अगेन इन शूटिंग वी हैड एपीएस तोमर, रुद्राक्ष पाटिल एंड नीरज कुमार इन मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस, विनिंग द सिल्वर फॉर इंडिया। और एथलेटिक्स में जैसे हमें भी बता ही रहते हैं आपको कि गुलवीर सिंह हैज वन एज द सिल्वर इन द मेन्स 10,000 मीटर। टेबल टेनिस की दुनिया में दोस्तों आपको बता दिया, दिया चिटले एंड मनुषा लॉस्ट टू वैंग चू क्विन सुन जिंगशा एंड वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स डबल सेमीफाइनल्स फॉर इंडिया। वहीं मनप्रीत कौर ने भी भारत को आज ब्रॉन्ज दिलवाया है और कृष्णा जयशंकर मेनन ने फिनिश किया 5वें स्थान पर विमेन के शॉर्ट पुट अरीना के अंदर। शाहिद
2: जी, दो भारत के खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनके बारे में बताना चाहूंगा। भारत के गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। गुरविंदर 11वें और अनिमेश कुजूर 18वें स्थान पर रहे। हालांकि दोनों भारत में जिस तरह से प्रैक्टिस करके जिस तरह गए थे, उम्मीदें थी कि काफी बेहतर करेंगे, लेकिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाने से वो चूक गए। आपको बता दें गुरविंदर ने 10.32 का समय लिया जबकि अनिमेश कुजूर ने 10.38 का समय लेकर 100 मीटर की दौड़ पूरी की और इनके इसके साथ ही उनकी जो चुनौती थी 100 मीटर में वो समाप्त हो गई है।
3: जी, एंड मूविंग ऑन टू एथलेटिक्स ऑल्सो, वी हैड बरानिका एलाइन गोवन विनिंग अस द ब्रॉन्ज वुमेन्स पोल वॉल्ट फाइनल में। अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टू हैव वन अ मेडल इन पोल वॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। स्क्वाश की बात करें तो जोशना चिन्नप्पा और वी सेंथिल कुमार बी डेविड पलिनो जेम के आरेबेदो ऑफ फिलीपींस इन मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल, यहां पर भी भारत के लिए एक मेडल कन्फर्म हो गया। आज का दिन स्क्वाश के नजरिए से तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। कबड्डी में दोनों ही महिला और जो मेन्स हॉकी की टीमें हैं भारत की, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स को, यानी भारतीय महिलाओं ने नेपाल को आज हराया कबड्डी के सेमीफाइनल में और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं कबड्डी की तरफ मेन में भारत ने थाईलैंड को हराया और उसके फाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ओवरऑल इफ यू वुड टू सम अप इंडियाज डे टुडे इन टर्म्स ऑफ द मेडल काउंट, इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट एंड थैंकफुली इट्स ऑल्सो एंडिंग ऑन अ डिसेंट एंड अ गुड नोट। शाहिद टुडे
2: जी, बिल्कुल, मैं एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं। एथलेटिक्स में भारत के लिए एक बड़ी खबर यह भी रही, बरानिका लेगोवन ने एशियन गेम 2026 की महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता है, जो इतिहास रचा है, वो एक संदेश देता है कि जो भारत के एथलेटिक्स के खासकर अगर हम बात करें ट्रैक और फील्ड की, दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
3: जी, और थोड़ी सी अपसेटिंग न्यूज़ बता दी कि आज के दिन का सबसे बड़ा अपसेट बैडमिंटन की दुनिया से आता है, जहां पर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी

0: Chirag Shetty lost to Pakkapon and Pirithachai Sukhpun, 1-2 of Thailand in the men's doubles first round. Ye kisi ko expected nahi tha ki aisa kuch hoga. They were the medal contenders and we were keeping our hopes alive from this duo of India, but things did not go our way. Weightlifting ke andar bhi Nirupama Devi finished 8th in the women's 61 kilogram category. Another heartbreak over there. Uske saath saath hum batate hain equestrian mein jahan pichli baar Bharat ko gold mila tha, aaj usme Gaurav Pandir, Hriday Vipul Chedda, Shruti Bora and Jay Sood ran out of medal places in the team final. Table tennis mein Manu Shah beat Faraji Benjamin Mink singles round 2 match. So overall ye kaha ja sakta hai ki it was a mixed day of medals that were pouring in, but on a lighter and a better note we can also end the day with the overall medal tally in which India is standing right now. Bharat ki standing agar baat kare to Bharat is samay hai 12th sthan par on the medal position with a total of 22 medals jisme se 2 gold aa chuke hai cricket aur shooting ki badolat. 9 silver hai, jo 9 silver hai uspe 5 shooting se aaye, 1 weightlifting se, 1 वुशु से, 2 एथलेटिक्स से. 11 ब्रॉन्ज है भारत के पास जिसमें से 4 शूटिंग के हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट, 1 सॉफ्ट टेनिस, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस.
1: जी, और सबसे ऊपर चीन बना हुआ 98 गोल्ड के साथ 100 यानी शतक लगने वाला है. 37 उसके सिल्वर मेडल जबकि 24 उसके कांस्य पदक. वहीं जापान 28 गोल्ड, 43 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज समेत 115 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि कोरिया की बात करें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज समेत 64 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है.
0: जी, आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही. अभी मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. हम एक बार फिर कल सुबह आपके साथ 9:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे टू ब्रिंग यू ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. फॉर द मोमेंट इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

वाकई हर किसी को यहाँ इस जिंदगी में प्यार तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ खुश रहना हर एक इंसान के अपने हाथ में होता है। 7:51 हो रहे हैं, प्रोग्राम हम तुमको अब यहीं पे वाइंड अप करने क्या समय आ गया है। मैं नाम बता देती हूँ जिन लोगों की रिक्वेस्ट आई है। प्रदीप अनंत कृष्णन जी का मैसेज आया है, प्रणव शिंदे जी का मैसेज आया है, और शिवा गोप और उनका पूरा परिवार, इन्होंने चाईबासा झारखंड से मैसेज किया है। हितेंद्र दास जी का मैसेज आया है असम से। राजेंद्र परमार जी, मुकेश कश्यप जी का मैसेज आया है जिला मुरादाबाद से। साथ ही रघुनाथ खन्नुकर कोल्हापुर से। दीपा पालकर जी का मैसेज आया है। अरविंद कुलकर्णी जी का मैसेज आया है। अजय साखरे जी का, विजेंद्र घटोल का अकोला से। चंद्रकांत रोड़े का नांदेड़ से मैसेज आया है। साथ ही पंकज मोहोड़, गोपाल सकपाल का मैसेज आया है, राकेश माथुर, आकांक्षा सिन्हा का मैसेज आया है अहमदाबाद से। महाराज कृपान पूरी गोस्वामी जी का मैसेज आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। बलकरण वर्मा जी का मैसेज आया है, ये मैसेज आया है बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। हीरामणि वर्मा का मैसेज आया है छत्तीसगढ़ भाटपारा से। प्राची शिंदे जी का मैसेज आया है, साथ ही साथ में नरवेल महाराष्ट्र से। नहावकर और पूरा परिवार है, पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल। संजय पाटिल जी का मैसेज आया है, दत्ता केदार का पंढरपुर से मैसेज आया है। मेहर अरोरा जी का श्री गंगानगर राजस्थान से, उनका पूरा परिवार है हमेशा की तरह मैसेज आया है। चेतन कुमार का मैसेज आया है मानपुर बाजार गया बिहार से। दिग्दर्शन और कविता, हाँ जी इतने मैसेजेस है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। फिरोज सिगनपुरिया जी का अभी अभी मैसेज आया है। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त मैसेजेस के साथ, अब सारे ही पढ़ लिए हैं। 8 के बाद अंग्रेजी गानों के साथ आरजे शीन होंगी आपके साथ में, लेकिन जाते जाते जो दो गाने आप लोगों के रिक्वेस्ट के थे वो मैं प्ले करते हुए जा रही हूँ। दो गाने अब मैं, नए गाने आएंगे, क्योंकि ये गाने वो आए हैं कि चूँकि आज गणेश विसर्जन है, तो गणेश विसर्जन के लिए जब बापा को लेके जाते तो काफ़ी फास्ट नंबर बजते हैं जो ढोल ताशे के साथ में। सो दो गाने ऐसे हैं जो फास्ट नंबर्स है और मैक्सिमम टाइम पे लोगों ने वो सुने हैं जो विसर्जन के समय बजते हैं। तो ये दो गाने आप सबके लिए, सुनते रहिएगा, दीजिएगा मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया।

0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि सीडीएस की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
1: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए सीडीएस का होना निहायत जरूरी था।
0: सीडीएस के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
5: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
2: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में

0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ. जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलेंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Joshua Chidambar and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed doubles squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000 meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
1: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
0: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टीके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
0: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से, जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
0: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही

0: 40 वर्षीय जोशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3, 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग हॉन्ग टैंग की चुनौती होगी। ये जोशना का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2, 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोट्रानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार दिग्गजत की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Rasood, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200 meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer,

0: however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
2: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है. पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया. पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी. सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा. अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई. भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं. वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा. प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी. प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली. यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया.
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
3: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी. निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही.
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
0: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500-meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500-meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500-meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
3: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए. सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे. इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया. इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर.
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
2: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया. भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका. चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया. भारत की ओर से श्रुति वोरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये

0: सात सूत्र हैं, सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को पहली अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। गजल की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है, बात चंद अल्फाजों में होती है लेकिन उसका एहसास बहुत देर तक दिल में रह जाता है। कभी एक शेर पूरी कहानी कह देता है और कभी एक मिसरा दिल की किसी पुरानी बात को छू जाता है। शायद इसीलिए गजल को सिर्फ सुना नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है और उसे महसूस भी किया जाता है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये गजल सुनते हैं और देखते हैं कि अल्फाज दिल से क्या बात करते हैं।

रात का सन्नाटा और गजल की आवाज, दोनों का रिश्ता भी कुछ अजीब सा है। दिन भर की मसरूफियत के बाद जब इंसान थोड़ा खुद से बात करता है, खुद साथ होता है, तो गजल के अल्फाज ज्यादा अपने लगने लगते हैं और हर शेर में जैसे अपनी ही कोई बात नजर आने लगती है। कोई गुजरा हुआ लम्हा, कोई अधूरी मुलाकात या फिर किसी का इंतजार, इसी खामोश रात के नाम एक खूबसूरत गजल सुनिए और अपने एहसास के साथ इसे महसूस कीजिए।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, मैं हूँ आपके साथ। ताहिर, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। जिंदगी में कुछ मुलाकातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबा होता है। कभी किसी से चंद पल बात होती है और वो बात सालों तक याद रहती है। प्यार भी शायद कुछ ऐसा ही होता है। वक्त कितना भी गुजर जाए, दिल किसी एक लम्हे को अपने पास संभाल कर रख लेता है, और जब वो लम्हा याद आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी होती है, आंखों में हल्की सी नमी भी। आइए एक गजल सुनते हैं।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल। मोहब्बत में सिर्फ मिलना ही तो सब कुछ नहीं होता, इंतजार भी मोहब्बत का एक हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है। किसी के फोन का इंतजार, किसी एक पैगाम का इंतजार, या बस उम्मीद में रहना कि शायद आज मुलाकात हो जाए। और जब इंतजार लंबा हो जाए तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। शायद इसीलिए मोहब्बत में गुजरा हुआ वक्त कभी पूरी तरह गुजरता ही नहीं है ना। ये गजल आपके पास जा रही है, बहुत कुछ कह जाएगी।

कभी किसी को अपने किसी अपने को समझा लेना भी बहुत जरूरी होता है। इसी एहसास के साथ यह गजल आपकी नजर।

रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, खास तौर पर वो रिश्ते जिनमें दिल शामिल हो। कभी एक छोटी सी गलतफहमी दूरियां पैदा कर देती है और कभी एक सच्ची बात सारी शिकायतें मिटा देती है। प्यार में अना से ज्यादा जरूरी एक दूसरे को समझना होता है, क्योंकि हर बार अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, होता है ना ऐसा? लेकिन अधूरी मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि उसमें खूबसूरती नहीं होती। कभी कभी किसी जिंदगी में आना, किसी का जिंदगी में आना आप अपने आप में एक खूबसूरत बात होती है। वो साथ रहे या ना रहे, कुछ लम्हे और कुछ यादें दिल के पास रह जाती हैं। और फिर कभी कोई गजल बजती है तो लगता है जैसे वो पुरानी याद, पुरानी कहानी फिर से सामने आ गई हो।

तो जनाब इसी खूबसूरत गजल के साथ आज की रंगे महफिल से इजाजत चाहूंगा मैं था आपके साथ ताहिर, और इसी वादे के साथ, हालांकि दिल तो नहीं है जाने का, फिर भी कहना होगा, जाना होगा, वक्त किसी के कहने से नहीं रुकता। बहरहाल चलता हूं, बहुत जल्दी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूंगा। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। टेक केयर, बाय बाय।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदों पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी।

0: आकाशवाणी।
1: तो श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में 12:03 हुए हैं और ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट शीतल गुप्ता। समय हो चला है हमारे शो जीरो आर शो का।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी मैं
2: पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो।
1: मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी।
2: जी
1: जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पे बहुत गुस्सा आया था
2: और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में।
1: अंदर आइए ना।
2: जी आपका गुस्सा उतर गया?
1: मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लाइए आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए।
2: जी

0: करके लाती हूँ।
1: जी सुनिए
0: जी,
1: अगर मुझे निमोनिया हो गया तो
0: इलाज हो जाएगा, डॉक्टर का घर है ना।
1: और आप?
0: मैं उनकी बेटी हूँ।
1: तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए?
0: चाय जरूर।

0: तुम्हारे सपने देख रही हूँ।
1: दिल की धड़कन इतनी तेज,
0: तुम्हारा नाम पुकार रही है,
1: सांसों की रफ्तार
0: तुम्हारे पास ले आई है, कहां से कहां।
1: सच बीनू, बीनू आज मैं बहुत खुश हूँ।

एफएम रेनबो चैनल है और हमारा कार्यक्रम जीरो आर शो जारी है। और हमारे साथ अभी श्रोता जुड़ गए हमारे विजेंद्र गहलोत अकोला महाराष्ट्र से, और इन्होंने फरमाइश की है गाने की बाबुल प्यारे जॉनी मेरा नाम मूवी से। आइए सुनते हैं।

तो श्रोताओं जारी है जीरो आर शो, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे शीतल। और अब अगली फरमाइश की है अतिंद्र जोशी ने, ये अमला एमपी से इन्होंने गाने की फरमाइश की है। आइए सुनते हैं इनका गाना और मूवी का नाम है झूठा ही सही।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीरो आर शो। मैं आपके साथ आपकी आरजे शीतल। वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ़स्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका ने एलंग गोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। और दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है 1:02:56। श्रोताओं, वक्त है हमारे कार्यक्रम सुहानी रात का। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात। और देखिए इस वक्त बहुत से श्रोता जो हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और देखिए एक गीत की जो है फरमाइश हमें भेजी है, और आपको बता दें कि दोस्तों ये गीत हमें भेजा है विजेंद्र जी ने, और ये सुनना चाहते हैं। तुझे रब ने बनाया किस लिए, और भाई देखिए ये लिख रहे हैं कि प्लीज इस गाने को आप जरूर प्ले कर दीजिएगा। तो देखिए आपकी फरमाइश पर ही हम अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत। और देखिए, आपको बता दें कि कुछ और श्रोता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मोहम्मद इम्तियाज जौहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं, और मुंबई दादर से राजेंद्र परमार जी ने हमें मैसेज भेजा है, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म मन से एक गीत। तो चलिए, आपकी फरमाइश में हम सुनवाते हैं अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

श्रोता, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुहानी रात। और देखिए, रात का ये वक्त है, हल्की सी ठंडी हवा जो है चारों ओर इस समय चल रही है बाहर जाकर अगर आप देखें तो। और देखिए, हम लोग इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं 90 के दशक के गीत। 90 का दशक एक ऐसा समय जिसकी अपनी ही खूबसूरती थी। तो चलिए अब आपको बता दें दोस्तों, एक और फरमाइश जो हमें भेजी है, ये हमें मैसेज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमें मैंने प्यार किया फिल्म से कोई गाना हमारे लिए बजा दें। और अंकित जी ने हमें मैसेज किया है और ये लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं। तो चलिए अब आपकी फरमाइश में हम सुनवाते हैं आपको मैंने प्यार किया फिल्म से ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

शुतौ 90 का दशक एक ऐसा समय जिसकी अपनी ही एक खूबसूरती थी। कैसेट की रील, रेडियो पर बजते फिल्मी गीत, गानों की फरमाइश, चिट्ठियों में लिखे संदेश और गाने को बार बार सुनने का इंतजार। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे और एक क्लिक पर हजारों गाने भी उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन संगीत के लिए लोगों का प्यार कभी कम नहीं था। शायद उस दौर में एक गीत के इंतजार करना ही उस खूबसूरती को और बढ़ा देता था। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुहानी रात, और देखिए अब कुछ और श्रोता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एम राजकुमार तिरची से हमें मैसेज कर रहे हैं और

श्रोता, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे वक्त अचानक पीछे लौट आया हो। एक पल में स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय याद आ जाता है, किसी का इंतज़ार याद आ जाता है, या फिर घर में बजता हुआ वही पुराना कैसेट प्लेयर। 19 के दशक के गीतों की सबसे खास बात यही थी कि उनकी धुनें आज भी कानों में पड़ते ही मन में अपनी जगह बना लेती है। तो आइए इन यादों को थोड़ा और करीब लाते हैं और सुनते हैं 90 के दशक का ही एक और खूबसूरत गीत। उदित ही जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं, ये है उदित नारायण की आवाज़ में।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुहानी रात में बस इतने, और आरती में अब लेती हूँ आपसे अनुमति, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर समय रहेगा हमारे कार्यक्रम भुलाए ना बने, और इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी शीतल। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है, और आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और वनानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। ये थे हिंदी में मुख्य समाचार, और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे शीतल। ये दिल्ली आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। आप सुनेंगे अब कार्यक्रम सुहाने भुलाए ना बने।

0: आकाशवाणी।
1: तो श्रोताओं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो और आपके साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपकी आरजे शीतल। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो लेकिन कुछ गीत आज भी वहीं ठहरे हुए हैं, हमारी यादों में, हमारी बातों में और हमारे दिल के किसी कोने में। आज हम लौटेंगे उस दौर में जब रेडियो पर बजता था एक गीत पूरे घर को रोक देता था, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। आज की हमारी संगीत यात्रा होगी 1970 के दशक की, एक ऐसा दशक जिसने हिंदी फिल्म संगीत को कई ऐसे गीत दिए जिन्हें आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और आंखों में पुरानी यादें उतर आती हैं। तो आइए बीते जमाने के उसी खूबसूरत रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि कुछ गीत सुने नहीं जाते, याद किए जाते हैं। और पहला गीत इसी एहसास के नाम, चुरा लिया है तुमने, फिल्म यादों की बारात, और गायक हैं इसमें आशा भोसले और

70 का दशक और मोहब्बत के गीत, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि ये गीत शुरू होते ही दिल को जैसे कोई पुरानी कहानी याद आ जाती थी। यकीनन हर एक इंसान जो आज इस गाने को सुनेगा, जो उस दौर से गुजर के आया है, जब इन गानों को सुनता है तो अपने ही एक अतीत में खो जाता है। फिल्म यादों की बारात का ये गीत आज भी अपनी मासूमियत और रोमांटिक अंदाज के लिए बेहद याद किया जाता है। और कुछ जो रिश्तों की जैसे हम बात कर रहे हैं कि अतीत में चले जाते हैं जब आप गाने सुनते हैं, चाहे वो कैसा भी अतीत, चाहे प्यार का रहा हो, दोस्ती का रहा हो, कैसा भी रहा हो, तो जब हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, जिंदगी वो रिश्ता है जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। और जब दोस्ती पर गीत लिखा गया और उसे आवाज़ मिली किशोर कुमार और मन्ना डे की, तो वह सिर्फ फिल्म का गीत नहीं रहा बल्कि दोस्ती की पहचान बन गया। जी हाँ, कई दोस्त जो हमारे श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, वो समझ भी गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म शोले का ये सदाबहार गीत आज भी दोस्तों के साथ बिताए उन बेफिक्र पलों को याद दिलाता है। तो आइए सुनते हैं शोले फिल्म से ये दोस्ती का गीत, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।

0: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्ती जैसे कि इसमें दिखाई गई है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच में, और दोस्ती जैसे आपकी और हमारी। तो दोस्ती की ऐसी धुन जिसे सुनकर आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कहते हैं वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों की यादें नहीं बदलती। और अब बारी है ऐसी गीत की जिसे प्यार है, इंतजार है और एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है। 70 के दशक में अगर रोमांटिक गीतों की बात हो और किशोर कुमार की आवाज़ का जिक्र ना हो तो कहानी थोड़ी सी अधूरी लगती है। जैसे कि लता मंगेशकर जी, ऐसे ही किशोर कुमार हमारे। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अपने समय में भी काफ़ी लोकप्रिय था। आज भी सुनने वालों को उसी पुराने रोमांटिक दौर में ले जाता है। आप समझे या नहीं, चलिए आपको बता देते हैं। गाना है ओ मेरे दिल के चैन और पिक्चर है मेरे जीवन साथी। इस गाने को हम सुनेंगे लेकिन एक प्रोमो के बाद।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

था वो एहसास जिसे शायद शब्दों में ज्यादा एक आवाज समझ सकती है। किशोर कुमार की आवाज में 70 का दशक आज भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, इस सफर में सिर्फ रोमांस ही नहीं है, इस दौर में दर्द भी था, जुदाई भी थी और रिश्तों की गहराई भी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। और अब सुनेंगे अगला गाना घर पिक्चर से, आपकी आंखों में। सिर्फ पुराने गीतों का दशक नहीं था 70 का जो दशक था, ये खूबसूरत धुनों, सादगी भरे संगीत और भावनाओं को बेहद नजाकत से पेश करने का भी दौर था। फिल्म घर का ये गीत भी उसी खूबसूरती के दौर को याद दिलाता है। चलिए कुछ देर के लिए आज की भागदौड़ को किनारे रखते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत, आपकी आंखों में कुछ।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: संदेश से पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपकी आंखों ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, प्यार की हो गई, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं और सुनते हैं डॉन पिक्चर की फिल्म से गाना खई के पान बनारस वाला। डॉन का ये धमाकेदार गीत याद आए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग उस दौर में जाके अमिताभ बच्चन का वो रूप भूल जाएं। और हर किसी की जुबान पर ये गाना उस समय, क्या कहें। तो तैयार हो जाइए और माहौल को थोड़ा रंगीन करने के लिए और सुनते हैं ये गाना।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग के हम कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में।

0: तो श्रोता सुन रहे थे डॉन पिक्चर की आवाज़ में ये गीत, और ये रिमेक है पुराना अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया है, और ये वाला गीत शाहरुख खान के ऊपर फिल्माया गया है, और इसमें जो संगीतकार हैं वो उदित नारायण हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो खूबसूरत गीत हम सुनने वाले हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, आंधी पिक्चर से, आइए सुनते हैं।
1: बरसों बाद यूं खिलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

तो दोस्तों, आज की जो हमारी संगीत यात्रा है वो यहीं समाप्त होती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना भूले। तो आज हमने 1970 के दशक के उन गीतों को याद किया जिन्होंने अपने दौर को तो बहुत खूबसूरत बनाया ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यादों का खजाना छोड़ दिया। कुछ गीत प्रेम की याद दिलाते हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ अधूरे रिश्तों की, कुछ बारिश और मुलाकातों की, और कुछ बस हमें उस दौर में वापस ले जाते हैं जहां जिंदगी शायद थोड़ी सी धीमी थी लेकिन एहसास बहुत गहरे थे। इसलिए तो कहते हैं समय गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते। इसी उम्मीद के साथ कि आज के गीतों ने आपकी कोई पुरानी याद जरूर ताजा की होगी, मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी आरजे शीतल। फिर मुलाकात होगी एक और खूबसूरत संगीत सवार पर। तब तक सुनते रहिए भुलाए ना भूले।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। ये आप सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और प्राणिका एलोंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ 3:02:50 और अब वक्त है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का, और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से

विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और ये श्रोता आप सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का

उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफसवा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करें। जापान एशियाई खेलों में कल 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और ब्रानिका अलंगवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM डेनवर चैनल और यह वक्त है कार्यक्रम सारेगामा का।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: हीराब,
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाले भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सके तो?
0: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
0: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
0: टोकरी?
1: मंजूर?
0: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लू। हाँ। वो देखते हो वो?
0: हाँ हाँ।
1: क्या?
0: मुर्गी।
1: हाँ पकड़ लाओ।
0: मुर्गी?
1: हाँ।
0: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: साउथ से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आजादी हो।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा,
0: सुनो तो मोना, सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले